नमस्कार, FM एक 102.67 MHz ते असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेमो चैनल तो बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 21 तारीख ते ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 11 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सेकंड हो रहे ने ते साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। सभा दी इस खूबसूरत शुरुआत दे विच असी अपने सारे सुनन वालियां दा निघा स्वागत करदे हां।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज तुसी सुन रहे हो FM रेनबो चैनल स्वेती छीवा चुईनी। आओ दोस्तों, सब तो पहला जानते हैं आज रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले साडे प्रोग्रामा दा वेरवा ते प्रसारण समा। परिचय के मुताबिक हुण तो कुछ पलां च तुसी सवन करोगे भगती संगीत दा प्रोग्राम वंदना। सवेरे 7 बजे सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस। 7:02 ते सिलसिला शुरू होएगा इंफोटेनमेंट प्रोग्राम द गुड मॉर्निंग जलंधर। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारिया गल्ला, बहुत सारे गीत। 8:30 तुसे सुनोगे पंजाबी खबरां। 8:40

तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाण्यो, मैं मूर्ख किछो दूजा। असीं हमेशा ना रब तो असीं दूसरे इंसान या अपने अंदर जिहड़े गुण ने उन्हां नूं लभण

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर FM रेनबो चैनल तो से सुन रहे हो सवेर दे सातवां श्रेणी पेश ने हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन सभ्याचारक केंद्र विखे नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग कौंसल मीटिंग की प्रधानगी करेंगे। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने के सिलसिले च कल राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की मीटिंग नवी दिल्ली च हुई। सरकार वालों राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों लई 95,692 करोड़ के अंतिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज। भारत सरकार ने पंजाब दे शौनी सीजन 2026 लई यूरिया लई मजबूत उपलब्धता की यकीनी बनाया। सूबे विच यूरिया की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई विच पंजाब मंत्रिमंडल वालों कई अहम फैसले ले गए। पंजाब दे विच नीट की मुड़ परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों लई मुफ्त सफर नू मंजूरी। मंत्रिमंडल दे वालों

और इस तो इलावा जुड़ा है अमरीका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी तैयार करने की समिति बनाई गई सी 1776 दे विच। ब्राज़ील दियां औरतां नूं चोण दा जिहड़ा है चोणां दे विच मतदान दा अधिकार वोट पाउण दा अधिकार मिलिया सीगा 1921 नूं।

मैं कह जी बुद्धू सामन और इस बुद्धू से मन दे बहुत सारे ख्वाब बहुत सारे चा बहुत सारे सुपने जुड़े ने ना उन्होंने पूरे करने की जिम्मेवारी मैं कह साड़ी है जी। और असी जेकर इस जिम्मेवारी नू सांभ लिया दिल तो जान लिया ता बहुत कुछ सफर जाना। मैं कह जी बच्चों की गल हुई सी कि आखिरकार जोड़े बच्चे ने ना वो साढ़े किन्ने मासूम दिल होंगे ने किन्ने कुछ सुपने संजोए रखते ने और अज जोड़ा उन्होंने बच्चों की जिंदगी दे नाल ही जुड़िया होया दिन है जी। पिंड सुनिया होगा ना गाने भी असं सुने होंगे कोटला छपाकी च मेरा ताइए जेड़ा अगे पिछे देखे ओदी शाम ताइए। अक्सर असी बच्चियां दे इन्हां गीतां नूं अपनी जिंदगी दे विच जीया हुंदा है। साडा टाइम कुछ ऐसा हुंदा भाई कि असी यह सोचते हाँ कि अजकल जिथे मोबाइल फोन के पिछे बच्चे खुबे हुए नज़र आते हैं मोबाइल फोन तो पता नहीं की लगता साडा टाइम किदा दा सीगा कि असी मौका लभदे सीगे सानूं घरों बाहर जाण दा सानू मौका मिले मम्मी डैडी तो लुक के थोड़ी जी या फिर परमिशन लै गए कि असं थोड़े टाइम लिए बस बाहर जा रहे हैं और बस आ रहे हैं असं खेड के आ रहे हैं उसी मौका लभदे सीगे और वो अच मौका जड़ा ना कितने गुआच गया मोबाइल फोन दे विच। और अज की जी तरीक है ना 11 जून है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सैलीब्रेट हो रहा है बच्चों डिजिटल स्क्रीना तो दूर करन दे लई मुड़ मैदाना दे विच जोड़न दे लई उन्होंने जिथे इन्हां चीज़ां दी जिहड़ा अहसास होना ना भुल जाए कि आखिरकार लुकण मीची की होंदी है दौड़ लाना की हुंदा या फिर होर खेडां जिहड़ियां की हुंदियां ने खेडना की हुंदा इस तो दूर जिथे बच्चे हुंदे जा रहे ने उन्हां नूं इन्हां खेडां दे नाल जोड़ना इस दे लई जिहड़ा है संयुक्त राष्ट्र दे वल्लों दसीए कि 11 जून नूं सैलीब्रेट हुंदा है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। और इस साल की थीम प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड खेडा खेड की रख्या करो बचपन की रख्या करो। अजकल साढ़े बच्चे जोड़े ने हाथों के बैट गेंद या फिर असी जगह मोबाइल फोन फड़ के रखते हैं और अच मैं क्या इसे ते ही अच्छ असी खास गलबात करा कि बच्चों किस तरह जोड़ा है डिजिटल जमाने के रखद्या हो अपने उन्होंने खेडों के नाल जुड़िया जाए किस तरह उन्होंने पार्कों के जोड़ा है आम बच्चों के विचरण का मौका मिलना चाहिए। ये दिन बई बहुत खास हैगा और इस दिन के खासियत जिकर मैं ही थोनों दस दी कि खास की होएगा एक्चुअल दे विच ये दिन खास क्यों हैगा और बच्चों के लिए ये दिन सैलीब्रेट होना क्यों शुरू होया उस दे बारे थोड़े नाल मैं क्या गलबात अज सांझी करांगी एक खास शख्सियत दे नाल ही। पर फिलहाल मैं क्या जी एक गीत दे नाल शुरुआत करते हैं इस विषय ते ही गलबात दी पर फिलहाल एक गीत तुसी इंजॉय करो गीत उस पार खास गलबात सुनावांगी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले दे नाल जुड़ी हुई। प्रोग्राम सुनते रहो गुड मॉर्निंग जलंधर अपनी आरशी अंजलि दे नाल।

0: जी
1: ने
0: जी जी
1: घरों बाहर जाना बंद करता है, जे जाते भी ने तां उन्हां दे हाथ विच कोई ना कोई गैजेट होंदे ने ते उन्हां दा इंटरेक्शन कला अपने नाल ही हो रहा होंदा या गैजेट्स नाल हो रहा होंदा। तो इस करके जिहड़ा यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्ले का, ते बच्चों की डिवेलपमेंट वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ते इस करके उन्होंने हर साल जून 11 नूं कहा कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले नूं सेलिब्रेट किया जाए। तो
0: जी
1: ये नाल नाल यह भी इंपॉर्टेंट कहा गया कि भाई बच्चे का अधिकार है खेडना,
0: जी
1: ते उन्हों कोई भी चुरा नहीं सकता।
0: बिल्कुल। और असी अक्सर असी देखे कि कीड़े खेडना ने ना फिजिकली तो बच्चों नू स्ट्रोंग बनांदियां ने, पर मेंटली जड़ा है उन्हां बच्चों ते बहुत ज़्यादा असर पैंदा है। मेंटली बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं बच्चे खेडां दे विच जो होंदे ने। इस चीज़ दे बारे थोड़े कोल जानना चाहोंगे कि किदां मदद करदियां ने खेडां बच्चों के विकास दे विच।
1: मैम आपा ना गल्ला करते हैं कि भी बच्चा बाहर निकल के दूजिया नाल विचरे खेडे, ते उहदे नाल की है कि भी सोचण दी शक्ति समझण दी शक्ति जिहनूं आपा जे गल करिए कॉग्निटिव एबिलिटीज
0: जी
1: कहिंदे आ, उहदे याददाश्त दी एबिलिटी, मैमरी होगी, रिसाइट करना। पहले आने एक तंग की सिर्फ लैंडलाइन होता सी मैडम जे तुहानू याद होवे, तो
0: जी
1: आपां नूं ऑन पिच याद होंदे सी सारे नंबर, भावें वह 50 नंबर क्यों ना होन
0: बिल्कुल
1: ऑनलाइन याद होंदे सी।
0: हाँ
1: पर अब तुसीं जे बच्चे नूं कहो ना कि भी तू यार अपने मापिया नूं फोन करके साड़ी जांच करा, तो मैनू नहीं लगता कि भी बच्चे की इन्नी मैमरी वधिया होगी है कि भी वो ऑन टच याद करके सीधा नंबर डायल करके गल करा दे।
0: हाँ
1: इवन के क्रिएटिविटी और रचनात्मक जिन्होंने आप कहते हैं वो भी घटते हैं बच्चे वालों, पर जे वो प्ले खेडेगा बाहर निकल के खेडेगा पुरानी गेम्स खेडेगा तो वो सारी मानसिक विकास हो सकता है जेड़ा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है
0: जी
1: डिवेलपमेंट वास्ते, कल्ले बच्चे भी डेवलपमेंट वास्ते नहीं पूरी सोसाइटी भी डेवलपमेंट वास्ते। मैम
0: जी ते सोसाइटी दी असी गल कीती है तां असी अक्सर देखिया कि जिहड़ियां खेडां ने ना बच्चियां नूं ही नहीं आपस दे विच लोकां नूं भी समाज नूं भी आपस दे विच इक दूसरे नाल जोड़दियां ने। सो खेड जिहड़ी है किस तरह मदद करदी है आपसी भाईचारे दे विच एकता दे विच, ये जरूर दस्सो जी।
1: मैं जब भी अपन गल करते हैं खेडन की या खेड की, वो कभी कोई कास्ट नहीं वेखदा,
0: जी
1: कभी कोई रिलीजन नहीं वेखदा,
0: हाँ
1: कभी भी कोई रंग नहीं वेखदा, ना देखे जात
0: हाँ
1: ना देखे रंग, वो कला की देखदा भाईचारा वेखदा। ते जब असी खेडांगे या खिडावांगे या बच्चे खेडणगे तां की हुंदा कि सारी है जिहड़ी नेगेटिविटी है जिहड़ी आपां अजकल न्यूज सुन रहे हैं या आसे पासे वेखदे वो सारियां दूर हो सकदियां,
0: हाँ
1: ते इहदे नाल उहदी मेंटली डेवलपमेंट तां होनी होनी है, उहदे नाल उहदा अनुशासन, सहयोग, टीम भावना या टीम वर्क वो ग्रेजुअली इनक्रीज होंदा।
0: हाँ
1: इहदे नाल मन वो सरवाइव कर सकदा लाइफ च बहुत वधिया, क्यों प्ले उहदी चीज है या गेम्स उहदी चीज ने, कभी वो फिजिकल या मेंटली नहीं एनहांसमेंट करता या डेवलपमेंट करता, वो सोशली भी डेवलप करता है, स्पिरिचुअली भी डेवलप करता है।
0: जी जी ते असी अजकल दे डिजिटल दौर दी असी गल करदे आ ना कि बच्चे जिस तरह तुसीं हुणे गल करिया कि फोन दे विच रुझे रहिंदे ने, पर असी ये भी देखिया कि डिजिटलाइज होना भी जरूरी है, बच्चे दा उहनां चीज़ां दे नाल एक्टिविटीज़ भी होना जरूरी है। सो अजिहे टाइम दे विच तुसीं की कहना चाहोगे उन्हां पेरेंट्स नूं जो कि सारा ये टाइम मैनेज करन दे विच कितें ना कितें उलझ जाते हैं कि किस तरह बच्चे नूं स्पोर्ट्स दे विच पाया जावे या फिर बच्चे नूं पढ़ाई दे लई समां दित्ता जावे या उसते पर्सनल स्पेस दिती जावे।
1: मैम बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अज का युग की गल करिए ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

0: एक प्लेटफॉर्म पे गल कर रहे हैं जरा के एक सॉफ्टवेयर दे माध्यम दे नाल अपन एक दूजे नाल मेल कर रहे हैं, या
1: जी
0: पढ़ाई भी गल करिए कि कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, या कोई यहोजे एप्स हो गए जेडे के बहुत इंपोर्टेंट ने अजकल दी एनहांसमेंट वास्ते। पर पेरेंट्स नू चाहिदा वा कि बच्चे नू फोकस एहदे वल भी फोकस करावन कि जे घंटा पढ़ रहे हैं
1: हाँ जी
0: तां घट्टो घट्ट घंटे चो 5 मिंट, मैं ज्यादा नहीं मैं कह रहा, यानी कि 55 मिनट 55 मिनट वो पढ़ ले, 5 मिनट वो बाहर शेयर कर ले। पांच
1: जी
0: मिनट का समय बहुत सुंदर मैम, जे तुसी काउंट करो ते 5 मिंट इन्नी छेती नहीं लगते,
1: हाँ
0: ते वो जरा 5 मिनट भी उसकी सैर या कोई एक्टिविटी हो जाए जिदे नाल वो रिफ्रेश भी करेगा, ओदी रेसाइटेशन दी पावर भी वधूगी, ओनू चीजां याद भी रहनगियां, ते ओ स्ट्रेस विच नहीं आएगा, बहुत दूर हो जाएगा स्ट्रेस तो।
1: जी
0: कुमार शेड्यूल अपना के वेट लेन कि घंटे दी पढ़ाई बच्चे समय 5 मिनट उन्होंने वो करनी है या एक्टिविटी करनी है,
1: जी
0: इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर देम।
1: जी ते इस दिन नू असी देखिया कि असी सेलिब्रेट करते हाँ, पर अज कल टाइम जिहड़ा है इदां दा कि स्कूलां कॉलेजां दे विच भी पढ़ाई जिहड़ी है ना डिस्ट्रेस
0: हाँ
1: हुंदी है,
0: जी
1: बाकी चीज़ां भी हुंदी है, टाइम बच्चे नू एक स्पेशली पीरियड लगाना पैंदा है कि पढ़ाई दे लई, पढ़ाई तो थोड़ा जिहा ब्रेक लैण दे लई। सो अजे दे विच बच्चियां दे लई एक सलाह कि वो किस तरह अपने आप नू जिहड़ा है टेंशन फ्री रखने के लिए इन्हां खेडां दे विच आ सकते ने और आना क्यों जरूरी है।
0: मैम आप गल कर रहे हैं पढ़ाई दी अकेडमिक्स दी,
1: जी
0: एक्चुअली खेड भी अकेडमिक्स का ही हिस्सा है।
1: हाँ
0: मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के माध्यम राही जिन्हें भी पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स हैं या प्रिंसिपल्स ने, कि भाई वो अपना करिकुलम यहोजा डिजाइन करन कि जिदे विच हर क्लास लई हर बच्चे लई
1: जी
0: 1 घंटा या 45 मिनट उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज जरूर करवाइया जाए। जे आप क्लास में बैठे हाँ हरेक थां ते अजकल स्मार्ट क्लासरूम्स ने, ठीक है जी, ते स्क्रीन नू देख के अपनी अखा उदा ही खराब हो जाती हैं,
1: जी
0: एक तां वो तो आप दूर रहांगे, दूजा अपना जिहड़ा स्ट्रेस लेवल है वो घटेगा, तीजा अपनी जब असी बाहर निकलते आप नेचर नाल भी विचरते हैं अपना सहयोग एक दूजे नाल वधदा है, क्यों आप एक दूजे जे बाहर निकलेंगे सारे बच्चे तो एक दूजे नाल कोऑपरेट करेंगे,
1: हाँ
0: कोऑपरेट करेंगे वो तो भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने से भी कंफ्लिक्ट भी हुए भावे लड़ाई झगड़े भी बच्चे करते हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कि वह नेगेटिविटी में फिर पॉजिटिवनेस वाल कि लैके जाएंगे, कोहेजननेस वाल कि लैके जाएंगे, जरा सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याददाश्त की शक्ति, यह सारी चीजा आउटडोर प्ले नाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को भी चाहिए है कि भी वो कल अपने अंगूठिया नाल एप्स या गेम्स ना खेडन, और पूरी हरकत अपनी बॉडी की करन जिदे नाल उन्हां दे हरेक तुसी कहो कि भी कार्डियो वस्कुलर फिटनेस वधदा है, हार्ट की समर्था वधदी है, या उन्हां दी भजन की शक्ति च वाधा होंगे, स्पीड वधदी है, हरेक समर्था मोटर फिटनेस भी वधदी है खेडन नाल, इहदे नाल नाल शारीरिक तो है ही है, फिजिकली या फिजियोलॉजिकल तो है ही है, मानसिक भी ओदी शक्ति बहुत पॉजिटिव वे नाल वाधू वधने वाली जाती है।
1: जी। सो अज दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले और इस मौके दे उत्ते सर तुसी जिहड़ा है अपने विचार साडे नाल सांझा कीते ने साडे लिसनर्स दे लई, उस दे लई थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी।
1: जी ए सन साडे नाल अज फोन लाइन ते जुड़े डॉक्टर अमरप्रीत सिंह जी, जो कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच ने इस वेले, और अज दे दिन दा खास महत्व की हैगा बच्चियां दी जिंदगी दे विच खेड दा महत्व असी सब जानदे हां। भाई देखो बच्चियां दे बचपन नूं जीण दा एक मौका जरूर देना।

0: कि हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सुपना हुण देश के हर नागरिक का संकल्प बन गया। उन्होंने कहा कि आलमी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने 2025-26 7.7% की विकास दर प्राप्त की। देश हुण दुनिया दी सब तो तेजी नाल वध रही अर्थव्यवस्थावां विचों एक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हित में औरतों लिए राखवांकरण, 3 तलाक खिलाफ कानून, नागरिकता सोध कानून, भारतीय दंड संहिता से एक रैंक एक पेंशन जिहे महत्वपूर्ण फैसले लए ने ते अजिहे दलेराना फैसले भविख विच भी जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान नितिन नवीन ने कहा कि नवी दिल्ली के भारत मंडप विखे हुए NDA सम्मेलन च 35 राजनीतिक पार्टियां के 75 नुमाइंदियां ने हिस्सा लिया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं श्री नवीन ने कहा कि NDA नेतावां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई का धन्यवाद किया। इस इतिहासिक मील उपलब्धि हासिल करने उन्होंने वधाई दी। उन्होंने इसमें देश के 140 करोड़ लोगों माण वाला पल दसिया। उन्होंने कहा कि NDA इस समय 22 तो वध राजां विच सत्ता च है जो देश के भूगोलिक खेत्र का लगभग 75% हिस्सा कवर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के नेतावां तो प्राप्त वधाई सुनेहां लई उन्हां दा दिलों धन्नवाद कीता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का उन्हां दीआं शुभकामनावां लई धन्नवाद कीता। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के संदेश के संबंध च प्रधानमंत्री ने भारत अते मलेशिया दरम्यान मजबूत ते स्थाई दोस्ती लिए अपनी डूंगी शलाघा की। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी रणनीतिक भाईवले होर मजबूत करन ते वख-वख मुख खेत्रां च सहयोग वधाउण लई वचनबद्ध है। कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी का धन्यवाद करदिआं श्री मोदी ने भारत कैनेडा भाईवली लई धन्यवाद प्रगट करदिआं कहा कि आने वाले समय च भी नवीआं उचाईआं तक पहुंचेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुनेहे के जवाब च प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले सालों च भारत और इजराइल विचकार दोस्ती होर भी मजबूत होवेगी। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @TIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब पर साडा चैनल है @TIRR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ते सबका प्रयास के सिद्धांतों तो प्रेरित होकर भारत ने पिछले 12 सालों में बेमिसाल तरक्की देखी है। आकाशवाणी खबरां पिछले 12 सालों वख-वख खेत्रां च सरकार के उपरालों से एक विशेष लड़ी पेश कर रहे। अज असीं गरीबों की भलाई लई सरकार वालों चुके गए कदमों पर चर्चा करांगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों की भलाई और समाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के कई प्रमुख योजनावां लागू कीतियां ने। गरीबों लई घर मोदी सरकार का मुख्य तरजीही खेतर है। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पेंडू खेतरां विच आर्थिक तौर ते कमजोर परिवारां लई सूबियां नूं 4 करोड़ तो वध घर अलॉट किए गए हैं। खुराक सुरक्षा के खेतर विच सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ तो वध लाभपात्रियों नूं मुफ्त अनाज प्रदान कर रही है। दुनिया की सब तो वड्डी जनतक सेहत संभाल योजना के तहत 10.82 करोड़ लाभपात्रियों ने नगद रहत इलाज का लाभ उठाया है। इसी तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.55 करोड़ तो वध औरतों नूं मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिस नाल उन्हां नूं रवायती खाना पकाने वाले ईंधन के सेहत खतरों तो बचाया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हुण तक 1.12 करोड़ तो वध कर्जे रेहड़ी फड़ी वालों नूं वंडे जा चुके हैं। भारत का समाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 19% तो वध के 2025 64% तो वध हो गया है, जिस विच सरकारी भलाई योजनावां दे तहत लगभग 94 करोड़ नागरिक शामिल हैं। लगभग 25 करोड़ लोगों नूं गरीबी तो बाहर कढ़िया गया है, जो कि समावेशी विकास अते भलाई आधारित शासन वल एक महत्वपूर्ण तब्दीली नूं दर्शाउंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तो आकाशवाणी खबरां लई मैं राजेश बाली।
1: भारत सरकार ने पंजाब के सौनी सीजन 2026 लई यूरिया की मजबूत उपलब्धता नूं यकीनी बनाया है। अधिकारत सूत्रां मुताबक पंजाब च यूरिया की कोई कमी नहीं है ते लगातार निगरानी सूबे लई खाद का लोड़िंदा भंडार रख रही है। अधिकारत अंकड़े इस गल की पुष्टि करते हैं कि खाद विभाग ने पंजाब लई एक वाधू ते सेहतमंद सप्लाई चेन नूं सफलतापूर्वक यकीनी बनाया है। पंजाब लई सौनी सीजन 2026 की कुल लोड 14,50,000 मीट्रिक टन ते 9 जून 2026 तक 9 लाख मीट्रिक टन की गणना की गई। अनुपात लोड के मुताबिक खाद विभाग ने 10,71,000 मीट्रिक टन की उपलब्धता यकीनी बनाया है।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

सेवा अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप www.probono-doj.in तो प्राप्त कर सकते हैं।

FM एक सौ दो शारिया सत मेगा हर्ट्स FM रेनबो चैनल से सुन रहे हो स्वेर ने नोवा ट्रेनी पेश ने हुन तक दिया FM न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग कौंसल मीटिंग की प्रधानगी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों के 25 करोड़ तो वध लोगों का गरीबी तो बाहर आना सरकार दिया सही नीतियां का प्रमाण है। भारत सरकार ने पंजाब के सौनी सीजन 2026 के लिए यूरिया की मजबूत उपलब्धता यकीनी बनाया सूबे के यूरिया की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई दे विच पंजाब मंत्रिमंडल वालों कई अहम फैसले लाए गए। पंजाब दे विच नीट की मुड़ परीक्षा देण वाले उम्मीदवारों लिए मुफ्त सफर नू मंजूरी। मंत्रिमंडल दे वालों 1013 लैक्चरर की भर्ती नू प्रवानगी। उम्र हद दे विच 5 साल की छोट। गिले कूड़े नू साफ सुथरी ऊर्जा दे विच बदलन लई पटियाला अते जलंधर दे विच बायोगैस प्लांटा नू भी दित्ती मंजूरी। पंजाब सरकार दे वल्लों पटियाला दे विच हाइब्रिड सफाई मॉडल का आगाज। सूबे का सब तो साफ सुथरा शहर बनाने दे लई 30 दिनां दा टीचा मिथ्या। समाजिक सुरक्षा महिला अते बाल विकास विभाग दे वल्लों जिला मानसा दे विच एक बजुर्ग महिला की शिकायत ते तुरंत दखल देंदिया मामले की जांच। मुलजम नू कीता गिरफ्तार। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस दीआं महिला पुलिस अधिकारियां लई 93 दो पहिया इलैक्ट्रिक वाहनों नू कीता रवाना। पछमी एशिया संघर्ष विच तनाव दरमियान अमरीकी फौजा ने ईरान च कई टिकाणियां ते हमले कीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एथलीटां दी प्रदर्शन दी शलाघा कीती। ओलंपिक विच उच्च टीचे निर्धारित करन दा दित्ता सद्दा। अते दुनिया का सब तो वड्डा फुटबॉल मुकाबला फीफा विश्व कप 2026 अज तो शुरू। टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका कनेडा अते मैक्सिको दे विच होवेगा। इस सन हुण तक दीआं FM न्यूज़ हेडलाइंस।

हेलो जी, हेलो, वेलकम है जी, वेलकम है जी। शुरुआत हो चुकी है जी दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम दी। 9 बज के 4 मिनट सवेर दे चाह दिया चुस्कियां दे नाल वधिया जी। प्रोग्राम दे विच मेरी आवाज़ जाने की थोड़ी अपनी आरशी अंजलि लेके हाजिर हो चुकी है जी। थोड़ा अपना मेरा अपना प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी। और मैं क्या जी, इस प्रोग्राम दे विच तुहानू पता ही है जी, तुसी करनी हुंदी है अपनी आवाज़ दी प्रदर्शनी। ओए होए होए, मैं कि तुहाडी आवाज़ ही इस प्रोग्राम दे विच चलदी है, मैं तां विच छोटी छोटी डोज देण आ जांदी हां। अरे 9855-10-10-27 नंबर ते तुसी भेजणे है जी अपने मैसेजेस, प्यार भरियां गल्लां। और मैं कि जी, मैसेज छोटा जिहा होवे पर मैं क्या दमदार होना चाहिए। थोड़ी आवाज़ रेडियो ते इस तरह वजनी चाहिए है कि मैं क्या जी, मेरी आवाज़ नू वैसे ही लोग भुल जाण। पर इदां किदां हो दवां मैं अपनी आवाज़, किदां लोगों नू भुलण दे दवां। देखो, तुसी अपनी आवाज़ दे राही इत्थे अपने इस प्रोग्राम दे विच हिस्सेदारी पा सकदे हो। बाकी आवाज़ कोई गल नहीं, जेकर तुसी मैसेज रिकॉर्ड करके नहीं भी भेजना चाहते तां मैसेज टेक्सट करके मेरे तक पहुँचा दो। व्हाट्सएप ते करना जी 9855-10-10-27 नंबर ते मैसेज करना है। कोई भी थोड़े विच हुनर है, कोई भी थोड़े विच कला है, कोई भी मैं कि थोड़े घर दे विच कोई बुजुर्ग ने उन्हां दी कोई मिठी जी याद है पुराने समय दी, तां ओह साडे नाल साझा कर सकदे हो। बाकी जिथे रेंदे हो उतों की खासियत मैं क्या, असी तो डंका बजा बजा के दसते हैं, असी इस थान के उत्ते रहने बड़े ही मैं क्या रूह के नाल उस थान के बारे दसते हैं। तो तुम भी बस अपनी खासियत जी है ना, जिथे रेंदे हो आले दुआले जिथे जाते हो या कि घूमे फिरे हो किसी खास थान के उत्ते उस बारे भी दस सकते हो। और अज तो इस प्रोग्राम दे विच ना गल्लां पता मैं कि थोड़े थोड़े जी बचपन नूं दोबारा तुजिया जाए है ना। अजकल दे असी जेकर तुसी मेरा प्रोग्राम सुनिया होएगा सवेर तो, जेकर साडे रेडियो नाल जुड़े होवोगे तो ओबियसली तुसी इस प्रोग्राम दे विच अज दी मैं कह इस गलबात दा हिस्सा जरूर बनोगे। गलबात की है कि असी देखे आ कि अजकल बच्चे जिहड़े ने ना फोन दे पुजारी हो गए ने, फोन दे पुजारी इस तरह हो गए ने कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की बजाय बच्चे फोन के उत्ते गेमिंग के बल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एज अ पेरेंट्स असी कोशिश करते हैं कि उन्होंने दूर रखिए, पर असी ता ही उन्होंने मिसाल बन पावे ना कि जेकर असी आप बचपन वधिया तरीके जिया होगा। और जितों तक मैनू पता है असी तो अपना बचपन बहुत सोहना जी है, क्योंकि उस टाइम के उत्ते इन्नी ज़्यादा मोबाइल फोन का इन्ना क्रेज़ होंदा ही नहीं। सानू टाइम मिले असी बाहर भजन की कोशिश करते सके कि बस अद्धा घंटा 5-10 मिनट मिल जाए अपने दोस्तों मित्रों के ना खेडन दे। और ऐसा गेमां मैं क्या जिड़िया असी खेडते सके ना तुसी भी जरूर खेडियां होणगियां, तुसी जरूर मैं क्या कुछ ऐसियां साडियां पंजाब दियां साडे पंजाबियां दियां खेडां दे बारे मेरे नाल अपने विचार अपनी मैमरीज जिहड़ियां ने ना वो शेयर कर सकते हो। और अपनी मैमरीज शेयर करोगे तो ओबियसली वो रेडियो ते दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचणगियां। और एक सलाह मैं जरूर भाई देने हुई अपने लिसनर दोस्तों, इन शॉर्ट के मैसेज तुम भेजो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लिसनर जोड़े ने ना साढ़े ना जुड़े, नवे लिसनर दोस्त साढ़े ना जुड़न और साढ़ा प्रोग्राम जोड़ा ना होर भी लिसनर दोस्तों तक पहुँचे। सो फटाफट भेज दो अपने मैसेज, फटाफट अपने विचार भेज दो और फटाफट इस प्रोग्राम में मैं क्या अगे बताने इस खूबसूरत जी गीत और तुम अपनी आरशी अंजलि के नाल। मैं क्या कहीं ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कहीं कर चुके होंगे, कईयों के हाथ से चाह होनी है, कई कम्मा घर तुर पे होने हैं, पर नाल दी नाल तुसी मेरी आवाज़ नूं

जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: मैडम जी गर्मियां हैगियां हुण परौंठी दा मौसम गया ते मूंगी दी दाल दा चिल्ला बनाया हैगा वा ओ तुसी टेस्ट करके दसो किद्दां दा बनिया वा ते नाल तुसी देखो बच्चियां दी प्ले मैं तुहाडी अपनी किरण नरुला ग्रीन पार्क कपूरथला तों।
1: थैंक यू सो मच जी किरण जी। और मैं क्या जी प्लेट देख के मैंने पता लग गया सिगा कि तुसी ही भेजी हो सकती है। बाकी वाकई ही तुसी ही वो जी मैं वीडियो की गल कर रही थी वो भी साडे किरण जी ने ही भेजी सी कि बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जेकर नहीं करते ने ना घरां दे विच आप मौका लभ लिया करो वीकली जिहड़ा है उन्होंने कितना कितने लै जाया करो ताकि वो इन एक्टिविटीज़ के रुझे रहन अपना फिजिकली तो वो एक्टिव होणगे मैंटली भी उन्होंने बहुत सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां सीखण नूं मिलणगियां। राम स्वरूप अरोड़ा जी चौंक चिलना सुल्तानपुर लोधी तो सानू मैसेज आया एक गुजरते हुए दिन ढलती हुई उम्र दसदी है कि जिंदगी जी ली जाए तो बेहतर है दुखा का खत्म होना तो सिर्फ एक धोखा है जी। ओके जी ओके जी। और सानू सानू अगला मैसेज केड़ा आया जी केड़ा आया जी। मनजीत सिंह बद्दन जी होना दा पिंड बद्दोवाल लुधियाणा तो सानू मैसेज आया जी चिंता नू आखदे ने चिता एवें सड़िए ना दुख लब्बे निराशा देवण एवें वड़िए ना सच जाने बिना रोह विच एवें हड़िए ना सच जाने बिना रोह विच एवें अड़िए ना चुक विच आ के साथ वे एवें लड़िए ना की क्यों ते किवें ते रिश्ते नू जान लिए आस ते प्रयास दे रिश्ते नू जान लिए सिरड़ अते सफलता दे रिश्ते रिश्ते नू जान लिए उदों उदय उदय तो अस्त दे रिश्ते नू जान लिए सानू चढ़दी कला नाल मन तन भरिया होवे मेहनत नू अपना हम सफर करिया होवे राह रोके पहाड़ जां चढ़िया दरिया होवे हो जावे पार जो औंखणा तो ना डरिया होवे। मनजीत सिंह बद्दन जी सानू यह मैसेज कर रहे ने थैंक यू सो मच जी। नमस्कार जी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल जी पहली बुझारे ते अजिहा किहड़ा शहर है जिसनों असी खा सकते हैं। ओके जी अजिहा किहड़ी चीज़ है जिसनों बिना तोड़े वरत नहीं सकते। अगली गल ये है कि ईमानदारी सब तो वधिया नीति नीति है इस सानू ईमानदार रहना चाहिए सानू किसी नू दुख नहीं पहुँचाना चाहिए सानू अनुशासन दे विच रहना चाहिए ये जीवन दियाँ कुछ गल्लां जिहियां ने जो सानू सदा ही सुख दिंदियां ने ते सन्मान दिंदियां ने। थैंक यू मैडम जी। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान धर्म पत्नी कृष्णा धीमान सारा धीमान परिवार परिवार मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो सानू मैसेज कर रहा जी। ओके जी सानू बुझारता ने आंसर भी भेजते ने पर तुसी मैं क्या दसने है जी आंसर है कि 15 मिनट है पहली बुझार सी अजिहा केड़ा शहर है जिसका जिसनों असी खा भी सकते हैं आंसर मैंने पता लग गया तुसी हुण दसना और अजिही केड़ी चीज़ है अजिही केड़ी चीज़ है जिसनों बिना तोड़े वरत नहीं सकते वो भी दस देना। वैसे कई रेगुलर घर असं खाने और चलो जी चलो जी आ जाओ जी अगला मैसेज सुनते हैं केड़ा है।
2: आवाज़ दी दुनिया दे दोस्तो प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी
2: सत श्री अकाल अंजलि बेटी
1: जी
2: और ठीक ठाक हो
1: सब ठीक है जी
2: जी। सब तो पहला तो मैं अदारा आकाशवाणी जलंधर दा बहुत बहुत धन्यवाद है ये आकाशवाणी एफ एम रेनो दा बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने साडी बेनती कबूल की जिहड़ा मेन चैनल है उन्हें चालू करता जिस नाल असीं ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਂਝੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਗੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬੇਟੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਭ ਬਸ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮਾਘਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜੀ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਨਾਮ ਜੀ
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੰਜਲੀ
1: थैंक यू सो मच जी मैसेज भेजने के लिए बाकी ही थोड़ा थोड़ी पुकार जुड़ी है वो सुन ली गई है और मेन चैनल चल गया जी और तुसी इंजॉय करो उत्थे भी प्रोग्राम बाकी डिटेल्स से तो चल ही रहा है और अगला मैसेज केड़ा आया जी साडे लिसनर दोस्त आ जाओ सुनते हैं।
3: हेलो दोस्तों ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਜੇ ਐਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ
2: ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ।

जी दोस्तों, कैसा लगा ये प्रोग्राम? वाकई जी कहिंदे ने कि वैसे तां असीं नवें दौर दे विच सारियां चीज़ां सारे गीत जिहड़े ने ना उह सोशल मीडिया तों असीं सुण सकदे हाँ। हाँ जी बिल्कुल सुन सकदे हाँ, लेकिन कुछ इहो जिहे अफसाने कुछ इहो जिहे तराने जिहड़े ना साडे दिमाग चों ना कदी कदी निकल जांदे ने, मतलब उह सानूं मैमरी नूं थोड़ा जिहा फ्रैश करन वास्ते याद आउंदा है कि बई आ गीत सीगा, आ वाला सॉन्ग सीगा, पर फिल्म याद नहीं आ रही।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

वेल फ्रेंड्स, प्रोग्राम गीत बाहर तुसे इंजॉय कर रहे हो और वक्री वक्री सिंगर्स और नाल दी नाल वक्री वक्री एक्टर्स जिन्हां दियां फिल्मां इस प्रोग्राम दे विच थाडे रूबरू कीतियां जांदियां ने, उन्हां फिल्मां दे गीत। अक्षय, सलमान खान, करिश्मा कपूर एक अजिहा चुलबुला किरदार है कि मतलब हरेक रोल दे विच फिट हो जांदे ने। और उसी तरह बॉबी दियोर की जेकर मैं गल करा जिवें कि बादल बिच्छू, मतलब कि उन्हां दी ओह वालियां मूवीज जिहड़ियां कि उस दौर दे विच, उस गोल्डन इरा दे विच उन्होंने जिन्हां फिल्मां दे विच अपना किरदार निभाया सी। एक स्मार्ट हैंडसम लड़का, करली जे बाला वाला, बिल्कुल भोला भाला। हालांकि उन्होंने फिल्मों के उस टाइम पर उन्होंने एक्शन जड़े अपने नहीं दिखाए थे, लेकिन उस तो बाद जिन्हें भी उन्होंने मूवीज़ आई हैं उन्होंने फिल्मों के उन्होंने किसी फिल्म के सुपर स्टार के नाल नाल पुलिस या फिर फौजी का रोल भी अदा किया है। और तुसी देखो कि तुसी जेकर इन्हां एक्टर्स दी तुसी रियल लाइफ देखो तो बड़ी सिंपल तो बड़ी सोहनी होंदी है, लेकिन जिदा जिदा अपने फिल्मों दे विच अपने अदाकारी करदे ने, रोल्स नू निभाउंदे ने, उत्थे सानू देख के लगता है कि शायद ये जो इत्थे कर रहे ने अपना किरदार निभा रहे ने, इसी तरह शायद ये अपनी जड़ी निजी जिंदगी दे विच भी होण। और फिल्मों के ना कई बार ये दिखाया जाता है कि जिन्हें भी एक्टर्स ने या फिर जोड़े कि नैगटिव रोल करते हैं वो क्रिमिनल होंगे ने, और नाल दी नाल कुछ एहोजियां चीज़ों की वरतों करते हैं जिड़ियाँ कि बैन ने, लाइक कोई नशा, कोई ड्रिंक। और सब तो सोहनी गल ये कि इन्होंने अपनी परसनल लाइफ के कभी भी इन्होंने चीज़ों को टच नहीं किया हों, जिहड़ी कि हैल्थ वास्ते मतलब हैल्थ नू हार्म कर सकदियां ने। जी जी जी जी, प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार, एंड गीत बहार दे विच अगला गीत जड़ा ना बिल्कुल त्यार बर त्यार है। और जिवें कि मैं बिच्छू दी गल कर चुकी हाँ बॉबी देओल यानी कि करली वाला वाले लड़के दी, तो उहदी एक और फिल्म जो कि 2000 दे विच आई सी यानी कि बादल ओ वाला बादल जिन्ने बिना बरसात फिल्म बादल बना दित्ते। जी, होर बहुत सारिया फिल्मों ने जिन्हों की मैं गलबात करांगी इस प्रोग्राम दे विच। फिलहाल अगला जिहड़ा गीत हैगा जसपिंदर नरूला एंड उदित नारायणन की आवाज़ दे विच, बादल फिल्म 2000 दे विच बनी है, तुझे देख के दिल मेरा डोले। सो जी, इस गीत नू देख के मतलब सुन के अपना सबदा किन्ना के दिल डोलदा है, आओ सुनदे हां।

प्रोग्राम भी तो हमने आपके साथ एंजॉय करना है। हाँ जी करांगी करांगी। लेकिन दुल्हन हम ले जाएंगे एक होर ट्रैक जिहड़ा कि मैनू बेहद पसंद है, लो जी थोड़े नाल साझा करदे हाँ। तो तुसीं सुनोगे इस प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, इस तो बाद 11 बजे मिलते हैं अगले प्रोग्राम दे विच।

समा हो चुकी है जी एफएम न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग कौंसिल मीटिंग की प्रधानगी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 सालों में 25 करोड़ तो वध लोगों का गरीबी तो बाहर आउण सरकार दीयां सही नीतियां का परिणाम निकलिया है। उधर भारत सरकार ने पंजाब के सौनी सीजन 2026 लई यूरिया की मजबूत उपलब्धता नूं यकीनी बनाया है। सूबे में यूरिया की कोई कमी नहीं रहेगी, यह भी भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई में पंजाब मंत्रिमंडल वालों कई अहम फैसले लए गए ने। पंजाब विच नीट की मुड़ प्रीख्या देने वाले उम्मीदवारों लई मुफ्त सफर नूं मंजूरी दी गई है। उधर मंत्रिमंडल वालों 1013 लैक्चरारां की भर्ती नूं प्रवानगी। उम्र हद विच 5 साल की छोट होवेगी। गिले कूड़े नूं साफ सुथरी ऊर्जा विच बदलण लई पटियाला ते जलंधर विच बायोगैस प्लांटां नूं भी मंजूरी दे दित्ती गई है। पंजाब सरकार वालों पटियाला विच हाइब्रिड सफाई मॉडल दा आगाज। सूबे दा सब तो साफ सुथरा शहर बनाउण लई 30 दिनां दा टीचा मिथिया गया है। समाजिक सुरक्षा महिला अते बाल विकास विभाग वालों जिला मानसा दा एक बजुर्ग महिला वालों शिकायत ते तुरंत दखल दिंदिया मामले दी जांच मुलजम नूं गिरफ्तार कीता गया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस दीयां महिला पुलिस अधिकारियां लई 93 दो पहिया इलैक्ट्रिक वाहनां नूं रवाना कीता है। उधर पछमी एशिया संघर्ष विच तनाव दरमियान अमरीकी फौज ने ईरान च कई टिकाणियां ते हमले कीते ने अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अथलीटां दे प्रदर्शन दी शलाघा कीती है। ओलंपिक लई उच्च टीचे निर्धारित करन दा दित्ता सद्दा। दुनिया का सब तो वड्डा फुटबाल मुकाबला फीफा विश्व कप 2026 अज तो शुरू होवेगा। टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका कैनेडा ते मैक्सिको विच भी होवेगा। ई सन हुण तक दी एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

0: सुरक्षा स्कीम दे टैली लॉ न्या बंधु कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैली लॉ ते टोल फ्री नंबर 1-44-54 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ए, मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच

0: मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाऊंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी, मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या ओहे ठीक है पुत्र।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुहाडा एक बार फिर तो जी निघा जिहा स्वागत है। वेलकम जी आया नूं ते जी प्रोग्राम जिहड़ा है लो जी, मैनूं पता है कि इस प्रोग्राम दा वी तुहानूं ना बड़ी बेसब्री दे नाल इंतजार रहिंदा है, क्योंकि जी हर प्रोग्राम दे विच अपनी एक वक्री खासियत हुंदी है, उहदा एक फॉर्मेट हुंदा है और उहदे विच की दसणा हुंदा है उह तुहानूं सब नूं पता हुंदा है। इस करके तुहाडी जिहड़ी शिद्दत हैगी ना हर प्रोग्राम दे लई वक्री है। गीत बहार प्रोग्राम जिहड़ा कि गीतां दा गुलदस्ता हुंदा है 10 to 11 बजे, उस तो बाद जी तुहाडा सब तो सुपर डुपर फेवरेट वाला प्रोग्राम फोन इनफरमाइश यानी कि पंजाबी तड़का, ते इस तो बाद जानी कि हुण दा समां जिहड़ा है वह है जी प्रोग्राम होम स्वीट होम दा। एंड मैं प्यारी दोस्त तुहाडी, मतलब मैं अपनी आप दी तो प्यारी हैगी हाँ, तो मैनूं पता है कि मैं तुहाडी प्यारी दोस्त भी हाँ, क्योंकि जी प्रोग्राम दे विच तुहाडा साथ मैं ही बहुत प्यार ते बहुत वधिया ढंग दे नाल निभाउणा है, तां ही तां तुहानूं प्रोग्राम दे बारे की गल्लां ने वह मैं ही करनियां ने। हालांकि इस प्रोग्राम दे विच फोनिन ते गल नहीं होएगी, एक तरफा ही गल तुहानूं सुनाई दित्ती जाएगी जो कि मैं बोलांगी ते तुसीं सुनना है। जानकारी भरपूर ये प्रोग्राम, इनफॉर्मेशन ना लैस ये प्रोग्राम होंदा है। घर बार दियां गल्लां, उस रीति रिवाजां दी गल्लां ते कुछ वो खट्टियां मिठियां गल्लां जिहड़ियां कि असीं भुल जाने हां, ते तुहाडी याद नूं मतलब तुहाडी याददाश्त नूं असीं ताज़ा करना है, ते जे समां लगा ते कोई वधिया जी रैसिपी भी तुहाडे नाल सांझी कर देनी है। हाँ जी हाँ जी, और सब तो जरूरी गल कि एक कैमरा असीं बिल्कुल पंजाबी गीत सुनने ने सिंगर्स दे, मतलब उहदे विच मेल फीमेल हो सकदे ने, ते नाल दी नाल कुछ चुनिंदा फिल्मां हो सकदियां ने। सब तो पहले आगाज़ करदे हां जी रणजीत बावा दा गीत ग्राफ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे।
1: हुन 0 रुपए किवें दवा?
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रेनबो लगाओ, धूम मचाओ।

0: 107 FM Rainbow.
1: कोई हसीना जब रूठ जाती है तो
0: गाँव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन FM Rainbow सुनती रहती है. All day listening and listening and listening. गाँव वालों अब मैं जा रहा हूँ FM Rainbow लाने.

तू मेरी धड़कन, तू ही मेरा सुकून है। तू मेरी धड़कन, तू ही मेरा सुकून है। तेरे साथ है तो ज़िंदगी का हर लम्हा बहुत ही खूबसूरत है। मेरी आंखों में तेरा चेहरा है, मेरी बातों में तेरा जिक्र है। मेरी आंखों में तेरा चेहरा है और मेरी बातों में तेरा जिक्र है। खुदा की इबादत के बाद, खुदा की इबादत के बाद मुझे सिर्फ तेरा ही फिक्र है, मुझे सिर्फ तेरा ही फिक्र है। 102.7 FM ते प्रोग्राम चल रहा है जी, मिड डे मेलोडीज। और अगला गीत है मेरा ते बहुत ही फेवरेट है, मतलब जो भी मेरा दिल करे ना, मतलब एक गीत मैं ज़रूर सुन दिया।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज। आंखें चुराकर जब मुस्कुराते हो तुम, आंखों को चुराकर जब मुस्कुराती हो तुम, कसम से चांदनी रात भी फीकी लगने लगती है। कोई हद ही नहीं शायद मोहब्बत के अफसाने में, कोई हद ही नहीं है शायद मोहब्बत के अफसाने में। जहां तुम याद ना आओ ऐसी कोई सुबह नहीं, ऐसी कोई शाम नहीं, ऐसी कोई सुबह नहीं और ऐसा कोई हमारा प्रोग्राम नहीं।

तेरी मोहब्बत का ये आलम है, ऐ सनम तेरी मोहब्बत का मुझ पे ये आलम है, हर पल तुम्हारी ही यादों में खोई रहती हूँ। सुना है कि आपके दीदार को तो आईना भी तरसता है। वाह क्या बात है, सच्ची में मैंने सुना है कि आपके दीदार को तो आईना भी तरसता है। अगर यकीन ना हो तो, अगर आपको यकीन ना हो तो इन बारिश की बूंदों से पूछें ज़रा कि सच में ये इंतज़ार करते हैं कि कब आप भीगोगे, कब आप इस आईने के पास आओगे। 102.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज, और इन प्यार भरे लम्हों में बरसात हो जाए और उनकी याद आ जाए। वाह सच्ची में दिल में सुकून की किलकारियां गूंजने लगेंगी। और दूसरी तरफ FM रेनबो ट्यून किया हो और लगे हो लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही बेहतरीन गाने, जिनको सुनकर अगर प्यार नहीं भी हुआ तो खुद ब खुद अपने आप से प्यार करने लगेंगे आप, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लता जी की सुरीली आवाज़ है और वो पूरी ज़िंदगी इन गीतों को, इन आवाज़ को और अपने आप को प्यार करती रही हैं। और आज हम उनके गीतों को बे इंतहा प्यार कर रहे हैं और सुनते हैं, और यूं ही लगता है हमें कि वो आज भी हमारे आसपास यूं ही गाते गुनगुनाते हुए हमें देख रही हैं।

0: प्रबंध विकसित किए जा रहे ने। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दिया कुछ किस्मां ते एक्साइज ड्यूटी माफ कर दिती है। ते एक महीने तक चलन वाला फुटबॉल मुकाबला 2026 फीफा विश्व कप आज रात मैक्सिको सिटी दे इतिहासक एस्टाडियो एस्टेका विखे शुरू हो रहा है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग कौंसिल मीटिंग की प्रधानगी कर रहे ने। मीटिंग विच उद्यमता नूं उत्साहित करन, हुनर वधाउण अते देश भर विच निरंतर रहण योग रुजगार के मौके पैदा करन दे उपावां ते विचार वटांदरा कीता जा रहा है। विचार वटांदरे समूहक तौर ते इक लागूकरण रोडमैप तैयार करन ते भी केंद्रित होणगे, जो जवाबदेही अते मापणयोग प्रभाव नूं यकीनी बनाउंदे होए शासन डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना राही संचालित केंद्र अते राज भारत की विकास यात्रा नूं तेज करन लई रल के काम कर रहे ने। उन्हां अगे कहा कि केंद्र अते राजां दे समूहक यतन विकास विकसित भारत के सांझे दृष्टिकोण नूं साकार करन विच इक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि किसानां दी भलाई सरकार दीआं प्रमुख तरजीहां विचों एक है ते सरकार उन्हां दे जीवन नूं सुखाला बनाउण लई हर संभव यतन कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खुराक सुरक्षा, पोषण ते खुशहाली दी रीढ़ ने। प्रधानमंत्री ने इस गल ते भी जोर दिता कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अते फसल बीमा योजना वर्गियां पहलकदमियां ना सिर्फ किसानां दी आमदन दी राखी कर रही ने, सगों खेतीबाड़ी नूं भी मजबूत बना रही ने। किसान क्रैडिट कार्ड की महत्ता ते जोर दिंदे होए उन्हां दस्सिया कि यह कार्ड किसानां, पशु पालकां ते मछेरियां नूं खेती अते होर जरूरी जरूरतां लई बहुत घट व्याज दरां ते कर्जे तक आसान पहुंच प्रदान करदा है। उन्हां कहा कि सरकार दी बीज तो बाजार पहल फसलां लई उचित कीमतां नूं यकीनी बनाउण विच बेहद प्रभावशाली साबित हो रही है। उन्हां भी कहा कि सरकार ने देश दे किसानां नूं आधुनिक खेतीबाड़ी सहूलतां प्रदान करन ते लगातार जोर दित्ता है। श्री मोदी ने कहा कि खेतीबाड़ी सिर्फ उपजीविका दा साधन नहीं सगों समाज अते राष्ट्र दे पोषण दा मूल आधार है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ते बुल्गेरिया नाल संबंध लंबे समय तो चल रहे अते इकसार ने अते हुण दोवां देशां दा काम उन्हां नूं होर गतिशील अते गांह वधू संबंधां विच मुड़ नुहार देणा है। उन्हां ने गल बुल्गेरिया विच अपने बुल्गेरियाई हमरुतबा वेलिसलावा पैत्रोवा चामोवा नाल मुलाकात तो बाद कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्हां दी चर्चा दे तीन पहलू सन। पहला भारत ते ਬੁਲਗੇਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गेरिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने जोर दे के कहा कि भारत की आर्थिक सुरक्षा विघन ते हालिया अनुभवां अते दहशतगर्दी ते वध रहे खतरे बारे स्पष्ट स्थिति है। उन्हां अगे कहा कि भारत का मनना है कि यह जंग का युग नहीं है ते टकरावां दा इक्को इक हल गलबात अते कूटनीति विच है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अज राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ विखे जयपुर के आकाशवाणी कॉम्पलैक्स च कराए गए प्रोग्राम दौरान 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस वादे के नाल राज विच FM ट्रांसमीटरां की कुल गिणती 39 हो गई है। नवा ट्रांसमीटर सरहदी खेतर 80 किलोमीटर के घेरे विच रेडियो कवरेज प्रदान करेगा, जिस नाल लोगों नूं जानकारी, विद्यक समगरी अते मनोरंजन प्रोग्रामां दी विशाल श्रेणी तक पहुंच मिलेगी। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर तो कच्छ तक देश दे सरहदी इलाकिआं विच आकाशवाणी अते दूरदर्शन कवरेज नूं मजबूत करन लई विशेष प्रबंध विकसित किए जा रहे ने, जिस विच नवे FM ट्रांसमीटर अते प्रसारण बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है। उन्हें भी कहा कि अज राजस्थान विच सरहदी इलाकों नूं कवर करने लई एक वड्डी पहल शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा कि यह योजना देश की पूरी सरहदी पट्टी विच व्यापक कवरेज प्रदान करन दी है, जो कि कश्मीर तो लैके सारे पासे फैली हुई है। श्री वैष्णव ने प्रसार भारती के समुचे ढांचे नूं बदलण दा सद्दा दिंदिआं तकनालोजी युग विच रेडियो नूं प्रसंगिक रखण लई डिजिटल फर्स्ट ते हाई

0: पलां च तेरे वीरां तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते घर बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी

कहते हैं कि दिल में रहकर दिल पर वार करते हो, दिल में रहकर दिल पर वार करते हो, क्यों ये सितम बार बार करते हो। तुम्हें पता है कितनी मोहब्बत है तुमसे, तुम्हें पता है कितनी मोहब्बत है तुमसे, फिर भी औरों के लिए मुझे नज़रअंदाज करते हो। लिखत भेजी है सानू राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलियां सुल्तानपुर तो।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है।

0: सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
0: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
0: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का

0: प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ के स्वभाव कितने मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था,

0: ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं
0: जी।
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य

0: ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

0: किंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। जब हमारा मस्तिष्क और नसें सही ढंग से काम करती हैं, तभी हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी मेज़बान शिल्पा गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे पूरे शरीर के संचालन से जुड़ा है। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी तांत्रिका संबंधी विकार। आज हम जानेंगे न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण, लक्षण, बचाव और आधुनिक उपचार के बारे में विस्तार से अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद शिल्पा जी इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है जहाँ आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9।

0: 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज पर। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं।
1: देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, फिर जो उससे जो नसें निकलती हैं, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, वो नर्व्स होती हैं, वो सप्लाई करती हैं मसल्स को। तो ये स्ट्रक्चर मिलके नर्वस सिस्टम बनाता है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ होंगी, जैसे ब्रेन में अगर जो इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, या ब्लीडिंग हो गया, या उसमें क्लॉट बन गया, या हेरिडिटरी कोई बीमारी है, तो उससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होंगी। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड में हुआ, तो स्पाइनल कॉर्ड की सबसे कॉमन तो होती है एक्सीडेंट में, जो हम सुनते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी हो गया और पैरापेलेक्सी, तो पैराप्लेजिया हो जाता है, या क्वाड्रिप्लेजिया, मतलब चारों हाथ पैरों में लकवा हो जाता है। नर्व्स की जो बीमारी होती है, जो हम कॉमनली सुनते हैं कि न्यूरोपैथी हो गया, तो जो नर्व का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। और मसल्स की जो बीमारियाँ होती हैं, जिसको बोलते हैं मायोपैथी। जनरली उसमें होता है, न्यूरोपैथी में होता है कि हाथ पैर में आपको झंझनाहट हो रही है, हाथ पैरों में वीकनेस आ रही है, जो जनरली डिस्टली, मतलब पंजे और हाथों से शुरू होगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। मसल में उल्टा होता है, मसल में होता है कि आपको बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो रही है, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है। कुछ होती हैं जो मसल और नर्व के बीच का जो जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो बीमारी ऐसी होती है जैसे मायसिनिया ग्रेविस। तो आप कोई रिपीटेडली एक्टिव से, आप जैसे एक बार तो खड़े हो गए बैठ के, लेकिन जब पांचवी बार खड़े होंगे तो आपको थोड़ा वीकनेस फील होगा। जब आप खाना खाएंगे, लगातार खाना खा रहे हैं, पहली रोटी खा ली, दूसरी तीसरी में दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रिपीटेड एक्टिविटी के बाद आपकी मसल वीक हो जाती है। ये होता है क्लासिकल मायसिनिया, जो कि नर्व मसल के जंक्शन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं।
0: तो इसका मेन रीज़न क्या है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होती हैं, किस वजह से हो जाती हैं, क्या कारण है?
1: इसको हम एक तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे हम ब्रेन से शुरू करें, तो ब्रेन में जो कॉमन चीज़ होती है, वो क्या होती है, लकवा हो सकता है, जो हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं या पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। तो पैरालिसिस दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि ब्रेन का बहाव जो है, वहाँ पे किसी को ब्लड वेसल जो रुक जाए, तो उससे उस एरिया में खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर जो राइट साइड का ब्रेन अफेक्टेड, तो सिम्टम जो है वो लेफ्ट साइड में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हेमिप्लेजिया हो गया। तो हाथ या पैर उठना बंद हो जाएगा। अगर जो ब्रेन में हेमरेज हो गया है, तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में हेमरेज हुआ है। तो हम जो तीन चार चीज़ें होती हैं, जिससे हम बोलते हैं कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं स्ट्रोक के, सबसे पहले तो अगर जो आपका हाथ अगर ऊपर उठ रहा है और नीचे उठाने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ में अगर जो दिक्कत हो रही है, और बोलते हैं कि अगर जो आपकी चाल में अचानक लड़खड़ाहट होने लगी है, सिर में बहुत तेज भयंकर ऐसा हेडक हुआ है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, ये ऐसे सिम्टम आने लगे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको लकवा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, किसी को राइट साइड में भी चेस्ट पेन होता है, हार्ट जबकि लेफ्ट साइड में होता है, तो उसके मन में, दिमाग में आता है कि मेरे को ब्रेन हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, और वो एकदम भाग के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन मैं आप जो कुछ सिम्टम बता रहा हूँ, किसी का एक हाथ चलना अचानक बंद हो गया, पैर चलना, या पूरा एक साइड का हाथ का लकवा हो गया, लोग पहले क्या सोचते हैं, ये सो गया होगा, तो मालिश करते रहते हैं, या लोकल डॉक्टर से कई बार बात कर लेते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, वो प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा मानना है कि अगर जो कोई ब्लड प्रेशर बंद हो गया, इसमें क्लॉट आ गया, और आप विद इन 3 आवर्स अगर जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो एक ड्रग दी होती है जिसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर, वो दवा लगाने से, वो क्लॉट को डिसॉल्व करने से 100% रिकवरी हो सकती है। तो ये एक बार एक एम्स की स्टडी में हमने देखा था कि क्यों लोग लेट पहुंचते हैं। जब हम बोल रहे हैं 3 घंटे में आइए, तो सबसे पहला तो कारण था कि मरीज ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि लकवा है। हार्ट अटैक को तो एकदम आइडेंटिफाई करें, जबकि गलत डायरेक्शन में, लेकिन ब्रेन अटैक को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो सोचा किसी कारण से होगा। दूसरा कारण था कि जो सबसे पहले जिस कॉन्टैक्ट लोकल फिजिशियन या जिससे बात करी, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, वो उस, अब तो खैर बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, पुरानी स्टडी है, तो वो सेकंड फैक्टर था। तीसरा मेजर फैक्टर था ट्रांसपोर्ट। वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचने के चक्कर में 2 घंटे ट्रैफिक में रहे, तो जो प्रीशियस टाइम हमारा 3 घंटे का था, वो वेस्ट हो गया। तो आई वुड से कि आप सबसे पहले जो रीजनेबली अच्छा हॉस्पिटल है, आपके वहाँ जाइए और डॉक्टर को बताइए कि हमको लकवा हो गया। फ़ोन से बता सकते हैं तो पहले ही बता दीजिए, जिससे वो डॉक्टर सीटी स्कैन या MRI करने के लिए तैयार रहेंगे, और सीटी स्कैन में जैसे ही या MRI भी पता चलेगा कि आपको ये क्लॉट वाला

0: चुका है तो आपकी दवा वहीं शुरू हो जाएगी, और वहीं शुरू हो जाएगी तो विद इन थ्री, अब तो आजकल 4.5 घंटे तक भी हम दवा लगाते हैं तो वो क्लॉट डिजोल्व हो जाएगा, तो आपका लकवा पूरा ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: तो कुछ ऐसा भी है कि वो घर पे कर सकते हो कि मतलब इमीडिएटली घर पे क्या ट्रीटमेंट कुछ दे सकते हैं कि इतना मील वैल्यू हॉस्पिटल पहुंचे?
0: नहीं, ये सवाल आपका ऐसा है कि जो लोग क्या फ्रस्ट्रेट कर लें,
1: एग्जैक्टली
0: लेकिन क्या है कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है या क्लॉट बन गया ये हमको पता नहीं होता। अगर जो हम वो दवा दे दें जो क्लॉट में काम करती है तो हेमरेज बढ़ा सकती है, तो ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक सीटी स्कैन MRI करते हैं जिससे एकदम पता चल जाता है कि ब्रेन में हेमरेज हो गया है या क्लॉट हो गया है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उसका इलाज आगे ले जाएंगे। तो एक तो बात करिए हमने स्ट्रोक की, दूसरा होता है एपिलेप्सी कि मिर्गी के दौरे, तो मिर्गी भी ब्रेन से आती है
1: जी।
0: तो मिर्गी लोग समझते हैं कि सिर्फ बेहोश होकर गिरना ही मिर्गी है, ऐसा नहीं है। मिर्गी बहुत तरह की होती है, एक होती है जो क्लासिकली हम जानते हैं कि चारों हाथ पर अकड़ने लगते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आने लगता है, गर्दन एक तरफ टेढ़ी होती है और झटके मारता है, जो करीब 30 सेकंड से 2 मिनट तक होता है, फिर धीरे धीरे आदमी बेहोश हो जाता है, लंबी लंबी सांस लेता है, तो हम समझ जाते हैं इनको मिर्गी के दौरे पड़े। कभी कभी आदमी बेहोश नहीं होता है, सिर्फ हाथ में झटका आ रहा है लगातार, वो भी मिर्गी हो सकती है। कभी हो सकता है एक हाथ या एक पैर में सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, वो भी मिर्गी हो सकती है। कई बार अचानक चेंज इन बिहेवियर जिसको हम साइकिक सीजर बोलते हैं, वो भी मिर्गी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, इवन मिर्गी तो एज सिंपल एज ऐसी भी हो सकती है कि हालांकि लोग बड़े कन्फ्यूज रहेंगे कि अगर आपके पेट में ऐसा लग रहा है कि अचानक घबराहट सी हो रही है पेट में या अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आदमी फिर बेहोश जैसा हो रहा है, क्योंकि पेट में अच्छा नहीं लग रहा तो हर आदमी को होता है
1: जी।
0: लेकिन उसके बाद आदमी बेहोश नहीं हुआ था या कन्फ्यूज नहीं हुआ था, तो वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। तीसरा होता है इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन जो हम कॉमनली जानते हैं, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाता है या वायरल इंसेफेलाइटिस हो जाता है। अब तीसरी जो नई चीज़ पिछले 10 साल में हम ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगे हैं, वो ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। वो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली कोई भी बॉडी में अगर जो केमिकल या सब्सटेंस जाएगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है हमारे ब्रेन के कॉमन सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती हैं जो नहीं बननी चाहिए, और वो उस ऑर्गन को डैमेज करने लगती हैं जो कि शरीर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, और जो ब्रेन में होगी तो उसको हम ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की बीमारी हो सकती है। ट्यूमर एक और बात है, जैसे बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, ऐसे ब्रेन में भी कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। वो ब्रेन की झिल्ली की वजह से हो सकता है, ब्रेन के मटेरियल की वजह से हो सकता है। तो कुछ ट्यूमर तो ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं इतने खतरनाक नहीं है, जैसे मेनिन्जियोमा होता है, वो जनरली स्लोली बढ़ते हैं, कुछ परसेंट वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं, जो हम ग्लायोमा के नाम से जानते हैं, बोला जो हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं उस इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। तो जो ग्लायोमा ट्यूमर होता है उसमें ग्रेड होता है, जब ग्रेड 1 होता है तो हम मान के चलते हैं कि आदमी की 10 साल सर्वाइवल तो अच्छा होगा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होते हैं तो मानते हैं 5 से 8 साल या 10 साल की सर्वाइवल अच्छा होगा। एक होता है जो ग्रेड 4 होता है, ग्रेड 4 ऐसा है कि एक तो वो दिखने में ऐसा होता है कि एक जगह नहीं होता, वो जैसे पानी बह जाता है उस तरह से ब्रेन के कैंसर वाले सेल ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वो बहुत रैपिडली बढ़ता है, और कई बार हमने देखा कि जब तक हम उसके पहले सिम्टम से, उसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, तो कई बार एक दो दौरे पड़ते हैं लोग इलाज कराने नहीं जाते, इसलिए बोलते कभी भी दौरा पड़े तो ब्रेन का एक CT स्कैन MRI जरूर होना चाहिए, उससे एकदम पता चल जाएगा। तो प्रीशियस टाइम 2 महीने निकाल दिए उन्होंने कि दूसरा दौरा नहीं पड़ा। दूसरा होता है परसिस्टेंट सिर में हेडेक रह रहा है। तीसरा डिपेंड करता है वो कहाँ से शुरू होता है, चेंज इन बिहेवियर, पहले पिछले हफ्ते ठीक थे आप, अब आपका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। कभी भी अचानक याददाश्त आपकी कमजोर होने लगे तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, जाके मेरे को ऐसा लग रहा है तो आप देखिए और बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो एक ये ट्यूमर हो गया। ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कॉमन होता है रोड साइड एक्सीडेंट से, और हम जानते हैं कि जो लोग 2-व्हीलर चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं, और भगवान की ऐसी स्थिति हो जाए कि आप गिर जाएं और आपका सिर किसी चीज़ से टकरा जाए तो ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, ब्रेन की हड्डी टूट सकती है, वो हड्डी टूट के ब्रेन के अंदर घुस सकती है, तो कई बार ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उससे होता है। उसमें भी ये है कि अगर जो आप समय पर पहुंच जाएं तो अगर जो ऑपरेशन सही टाइम पे हो तो रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा उसी वक्त डैमेज इतना ज़्यादा होता है वो एक सेकंड में आप मतलब 60 की स्पीड से दीवार से टकरा जाए।

0: तो सोचिए आपका सिर कितनी बुरी तरह टकराएगा। कुछ ऐसी स्थिति होती है। तो सबसे पहले तो श्रोताओं को जानना चाहिए कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि मैं तो 10 साल से नहीं पहना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं हो सकता है, सबको पहनना चाहिए। और जब तक आप, और उसका दूसरा बात है जो मैंने देखा है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स वीडियो बनाते हैं, हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसको हुक नहीं लगाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमें प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर कभी भी हम बाइक या कुछ भी ऐसे राइड करें तो हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज़ पर। बातें हम और भी करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। हमारे पास एक मैसेज है, ये है, लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। आई फॉरगॉट मैनी थिंग्स, इवन स्मॉल थिंग्स विच वर टोल्ड अ मिनट एगो। आई फॉरगेट मैनी थिंग्स लाइक स्विचिंग ऑफ व्हीकल आफ्टर पार्किंग, टर्निंग ऑफ गैस स्टोव एक्सेट्रा। इज इट सीरियस? वॉट कैन बी डन?
1: ये जो सागर 26 साल के सागर साहब ने जो सवाल पूछा है, ये जनता का सवाल है ये तो, क्योंकि ये बड़ा कॉमन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी मल्टीटास्किंग कर रहा है। आदमी मोटरसाइकिल पे भी चला रहा है तो मोबाइल भी कान में लगा हुआ है और दूसरे काम भी कर रहा है। तो जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी, जैसे मैं उसको इस तरह समझाता हूँ, हमारी रैम होती है क्या, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, उसकी एक कैपेसिटी आपके तक

0: कर सकते हो। लेकिन हम उसके ऊपर मल्टी 20 ऐप खोल के बैठ गए। जब हम 20 ऐप खोल के बैठ जाएंगे तो रैम स्लो हो जाएगी। ये कुछ कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। जब हम मल्टी टास्क, एक तरफ तो आप सोच रहे हैं ऑफिस के बारे में,
1: काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ
0: काम
1: और रहे
0: कुछ
1: हैं।
0: ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने टारगेट दे रखा है वो भी चल रहा है, घर में वाइफ ने एजेंडा दे रखा
1: और
0: है
1: उसके
0: वो,
1: बाद क्या करना है?
0: उसके बाद क्या करना है। तो जब आप मल्टीपल चीज़ें सोच रहे हो तो उसके बीच में कोई आपको ये बता के चला गया कि ये फ़ोन नंबर पर बात कर लेना, तो आप 2 मिनट बाद सोचेंगे ये कौन सा फ़ोन नंबर था। तो ये हमारी मेमोरी की दिक्कत नहीं है, ये हमारे वर्किंग स्टाइल की दिक्कत है। तो इनको, सागर साहब को भी ये कहूँगा कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात है थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेशन करें। जब भी कह रहे कि जो गाड़ी का गाड़ी ऑफ करना भूल गए, क्योंकि आप जब उतरे तो आपको सोचते हुए उतर गए तो ध्यान ही नहीं रहेगा गाड़ी की ऑफ करनी थी। तो अटेंशन उस टाइम कितना आपका है उसकी वजह से। उसके लिए मैं कुछ हद तक आज के एनवायरमेंट को भी मैं ब्लेम करता हूँ। वो भी मैंने एक रेडियो प्रोग्राम में और भी कहीं कहा था कि आज से पहले हम टीवी देखते थे, आधा घंटे का प्रोग्राम देखते थे, सीरियल देखते थे, पौन घंटे का देखते थे। आज क्या देखते हैं, 15 सेकंड की रील। कोई प्रोग्राम अगर जो 2 मिनट का अगर जो हो तो हम देखते नहीं, उसको फॉरवर्ड कर देते। तो हमारा अटेंशन स्पान इतना छोटा होता जा रहा है। जो चाहिए हमको फास्ट चाहिए, अभी चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए। कोई बात भी कर रहा है तो लंबी बात करने वाला कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो जब आप सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट करे जा रहे हैं तो वो आपके माइंड में घुस ही नहीं पा रही है वो बात। यही बात हो रहा है कि वो रजिस्टर नहीं हो रही है। आपके हियरिंग ठीक है, आपने बात सुनी भी, आपको याद है, लेकिन क्या सुनी वो, क्योंकि रजिस्टर नहीं हुई वो। तो वो जब तक रजिस्टर नहीं होगी तो मेमोरी में नहीं जाएगी वो, तो आपको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई सीरियस बात नहीं है, बड़ी आम कंप्लेन है। तो पहले तो अपने आप को थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, मन को शांत रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दें, जिससे कि वो आप चीज़ें भूल ना जाए और आपके जहन में ध्यान रहेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, प्रणाम मैम, प्रणाम सर, माय फादर हैज़
0: इस्केमिक स्ट्रोक।
1: इस्केमिक स्ट्रोक ऑन 23rd Jan 2026।
0: जी
1: नाउ ही हैज़ लिटिल बिट फ्रोजन लेफ्ट शोल्डर, स्लो वॉकिंग इश्यूज़, व्हाट कैन बी डन, प्लीज़ टेल।
0: जैसे जनवरी में, मतलब ये 5-6 महीने हो चुके हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी कि लकवा मतलब एक तरफ जो है एक हाथ या पैर नहीं चलता है। अब ये डिपेंड करता है कितना सीवियर पावर, जैसे इनकी बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा डेफिसिट रहा होगा। जब भी लकवा हो जाता है तो 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो जिस कारण से लकवा हुआ उसके लिए इलाज करें। इस्केमिक स्ट्रोक में जनरली हम खून पतला करने की दवाई देते हैं, तो वो रेगुलर लेनी है। अब ये क्या हो रहा है, ये उस लकवे का कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हाथ चल नहीं रहा था और एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं होगी तो कोई भी जॉइंट है वो फ्रीज हो जाएगा, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। यही हाथ में होता है, यही पैर में होता है। पैर में एक और चीज़ होती है कि पैर में स्टिफनेस बहुत आ जाती है, हाथ में भी स्टिफनेस बहुत आ जाती है। अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कि क्या इस स्टिफनेस को कम करने के लिए दवाई इंजेक्शन लगा सकते हैं। एक बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन आता है, जो जो मसल बहुत स्टिफ होती है उसको लगा के उसको थोड़ा से सॉफ्ट कर देते हैं, तो आदमी का चलना और हाथ का पोस्चर बेटर हो जाता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हाँ रघुवीर जी बोल रहे हैं उत्तराखंड।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है?
2: जैसे एक्सरसाइज करते समय गर्दन को हल्का सा मोड़ते हैं ना,
0: जी
2: तो कट की आवाज आती है।
0: जी
2: हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: कट की आवाज आती है गर्दन को मोड़ते समय। दूसरी बात यह है कि मेरा आँख का ऑपरेशन हो चुका है,
0: जी
2: तो क्या वो नस से, दिमाग के नस से, क्या आँख से, आंख के नस से कुछ इफेक्ट पड़ा होगा? ये
0: नहीं,
2: पूछना
0: आंख
2: था।
0: का किस चीज का ऑपरेशन हुआ आपका?
2: आंख का ऑपरेशन
0: कैटरेक का ना? नहीं,
2: कॉन्टेक्ट
0: कैटरेक तो जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक हो जाता है, उसको इंस्ट्रूमेंट से निकाल के दूसरा लेंस डालते हैं, बड़े सिंपल सा है। तो इसमें 99.9% कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है। पर मैंने जो आपने सवाल पूछा उससे मुझे याद आ रहा है कि एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, 2 दिन बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। उसका कारण ये था कि क्योंकि ऑपरेशन करने जाए उनको एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। ऑपरेशन हुआ तब तक तो सब कुछ ठीक था, उस टेंशन में उनका बीपी बढ़ गया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये आँख की वजह से नहीं हुआ, ऑपरेशन की वजह से नहीं हुआ। तो आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या और दूसरी स्थिति को आप कंट्रोल कर लें। रही बात गर्दन में कटकट की, तो कटकट जो मसल्स और टेंडन जो बोन से टकराते हैं वो कटकट की आवाज़ आती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है। लेकिन अगर जो आवाज़ आती है तो उसको बार बार करके उस हिस्से को आप, मतलब उसको फ्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइज करिए,

0: और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से समझ लीजिए कि कहीं एक्सरसाइज आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात श्रोताओं को बताऊं, क्योंकि इन साहब ने जो सवाल पूछा उससे रिलेटेड ही है कुछ कुछ कुछ लोगों की आदत होती है गर्दन में झटका मारने की, ऐसे हाथ से पकड़ गर्दन एक तरफ मोड़ते हैं फिर दूसरी तरफ मोड़ते हैं या रोटेट करते हैं। ये कभी भी करना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है, स्पेशली जब बाल कटवाने जाते हैं तो जो बार्बर लोग होते हैं वो सिर के मालिश के साथ साथ गर्दन में झटका लगाते हैं, वो अच्छा लगता है जिसको लगा रहे हैं। लेकिन उसका जो सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन मैंने देखा है कि हमारे गर्दन में दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी दो नसें होती हैं, चार नसें होती हैं, उनमें से एक नस कभी कभी फट जाती है उसकी वजह से, और कभी कभी इमीडिएट लकवा नहीं होता है, वो फट जाती है, उसमें जब थ्रोम्बोस बनता है अगले एक या दो दिन या एक हफ्ते में फिर जाके लकवा होता है। तो ऐसी बातों को अवॉइड करना चाहिए और ये इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एक और बात मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ, बच्चे जो है कान में मोबाइल लगा के गर्दन और कंधा मोड़ के और मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंस बताता हूँ जिससे शायद हमारे श्रोतागण समझ जाएंगे ये कितना सीरियस हो सकता है। एक यंग लड़का था, वो अपने किसी परिवार वाले से रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक फ़ोन पे रात भर लेटे लेटे ऐसे गर्दन मोड़ के और कंधे पे मोबाइल रख के उसने बात करी और सो गया। फिर सुबह जब उठा तो उसको दूसरे लेफ्ट साइड में पूरा लकवा हो गया था। क्यों? कि जब वो इस पोस्चर में रहा तो उस मोबाइल की पोस्चर की वजह से उसकी राइट साइड की नस दब गई जो उसको उस टाइम महसूस नहीं हुई, और वो हल्की सी उसमें क्रैक आ गया, उसमें क्लॉट बन गया रात में और सुबह लकवा हो गया। तो ये पोस्चर भी कई बार कितना खतरनाक हो सकता है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: जी, आपने स्ट्रोक की बात करी थी, तो स्ट्रोक क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं या इंडिकेटर्स क्या हैं?
0: स्ट्रोक के, हाँ, स्ट्रोक की हमने बात करी थी। जैसे हमने बताया कि स्ट्रोक दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो किस हिस्से में ब्लड सप्लाई बने उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके या हुआ दूसरा कि वो नस फट गई, जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से नस फट गई। ऐसी स्थिति में चार पाँच चीज़ें को सिम्टम जो होते हैं, पहला होता है कि आपको एक राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हाथ या पैर कम चलने लगे अचानक। दूसरा होता है कि आपकी आवाज़ या तो बंद हो जाए या लड़खड़ा जाए या आपको लगे आवाज़ ठीक नहीं है। तीसरा होता है कि जब आप चलते हैं तो आपका चलने का बैलेंस खराब होने लगे अचानक। तो आपको सोचना चाहिए क्या ये लकवा है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि अगर ऐसा आपको डाउट होता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात करी कि विद इन 3 आवर्स आप पहुँच जाएंगे तो चांसेस है कि उसको ठीक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
1: कई बार होते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, हम सोचते हैं हाँ ऐसे ही हो रहा होगा, हम इतना ध्यान नहीं देते।
0: यही एक प्रॉब्लम है। मैंने जैसे कि पहले बताया प्रोग्राम में कि राइट साइड में चेस्ट पेन होगा तो हम सोचते हैं हार्ट अटैक,
1: लेकिन कई बार लेफ्ट में भी होता है या वैसे भी होता है, हम सोचते हैं अच्छा गैस का हो रहा होगा
0: जी जी,
1: तो हम उसमें पानी लेने लगेंगे कुछ लेने लगेंगे, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हार्ट के में भी प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है।
0: उसमें सबसे
1: इम्पोर्टेंट भी कुछ इंडिकेटर्स हैं,
0: उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एज है। अगर जो 25 साल के यंग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 25 साल में हार्ट अटैक नहीं होता है, पर यंग एज में अगर जो ऐसा सिम्टम हो रहा है तो शायद चांसेस हार्ट अटैक के कम होंगे। लेकिन उम्र दराज अगर जो किसी को हो रहा है तो सबसे सावधान है कि अस्पताल नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक ECG कर लें जो कि बता देगा कि मेजर हार्ट अटैक तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले ECG में नहीं दिखता है तो, लेकिन वो डॉक्टर देख के समझ जाएगा कि ये सिम्टम ठीक नहीं लग रहा है, तो उससे बचाव हो जाएगा।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हाँ जी मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैम, मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैम।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका राजकुमार जी?
2: जी मैम, मेरा भांजा उम्र उसकी 30 वर्ष है और अभी आज तत्काल की घटना, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो अचानक जो है जैसे कहीं पे जाएगा तो इसको एकदम अचेतन अवस्था में आ जाएगा, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या नाम है, मतलब कुछ भी नहीं बता पाया, कहीं भी चला जाएगा मैम। घर वाले पूरा खोजते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो 24 घंटे के बाद पता चला 2 दिन बाद वो कहीं पे, जब उसको वो चेतन अवस्था में आता है तो बताता है कि हाँ मेरा ये मेरा घर यहाँ पर है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे घर पे कॉल कर दीजिए, बता दीजिए। सब लोग पहुँचते हैं उसको वहाँ से रिसीव करके ले आते हैं, तो मैम हमें कहाँ दिखाना चाहिए, क्या दिक्कत है?
0: तो उनकी मानसिक स्थिति तो वैसे ठीक है ना?
2: जी मानसिक स्थिति
0: ठीक
2: है, सही है सर, मानसिक स्थिति ठीक है, पूरा नॉर्मल आदमियों की तरह व्यवहार करते हैं, खाना पीना मतलब व्यवसाय हर चीजें करते हैं, लेकिन ऐसी घटना जो सर बता रहा हूँ ये 5-6 दफा हो चुकी है, उम्र 30 साल है।
0: देखिए उम्र कितनी उनकी?
2: 30 वर्ष।
0: देखिए

0: आपकी बातों से लग रहा है इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जो हम समझते हैं ना। तो मिर्गी के दौरे में, एक तो मिर्गी का दौरा ऐसा होता है जिसमें आदमी के हाथ पे रकड़ जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आता है और आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, और 2 से 5 मिनट में होश आ जाता है। कई बार क्या होता है, ये मिर्गी के दौरे ब्रेन में लगातार चलते हैं। जब ये मिर्गी के दौरे पर लगातार चलते हैं तो जब थोड़ी देर बाद होश आता है, 10-15 मिनट, आधा घंटे बाद, तो उसको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि वो मिर्गी के इतने दूर होने से एक तरह से ब्रेन का फंक्शन रुक जाता है। तो वो कुछ टाइम तक याद नहीं कर पाएगा मैं कहाँ हूँ, कहाँ आया था, क्या हुआ था। तो लोग जवाब पूछेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये तो जो है कुछ गड़बड़ आती है, सही जवाब नहीं दे रहा, तो उसको मिसट्रीट भी करते हैं कई बार। लेकिन थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसको याद हो जाएगा, याद आ जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा घर ये है, मेरा एड्रेस है, जैसा कि आपके बेटे के साथ होता है। तो आप किसी भी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, या अगर हो सके तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और उनको ये सवाल भी पूछ लीजिए कि रेडियो पर प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने बताया था कि क्या इसको मिर्गी के दौरे तो नहीं है, तो वो उसकी जाँच करके उसका जरूर इलाज कर सकते हैं।
1: सर, मिर्गी से लेके काफ़ी मिथ्स भी हैं, और इमिडिएटली हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए इसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कुछ गीत ऐसे होते हैं हम जब भी सुनते हैं मन को सुकून सा महसूस होता है। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं तांत्रिका संबंधी विकार पर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे मिर्गी के दौरों पर, तो उससे जुड़े मिथ्स भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम पूरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन आपकी आवाज़ है ना हमें प्रॉपर नहीं पहुँच रही। अपने रेडियो सेट की प्लीज़ वॉल्यूम कम कर दीजिए।
2: अब आ रही।
1: हाँ जी, बताइए।
2: हाँ, पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: पहला सवाल ये है,
1: आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, कट कट के आ रही है। एक बार आप प्लीज़ दोबारे कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, नेटवर्क शायद आपकी तरफ आ नहीं रहा। तो हम बाद में आपकी कॉल लेते हैं। इतने एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, सर आई एम विशाल सिंह, मुझे ब्रेन ट्यूमर ग्लियोमा हुआ था। सर्जरी के बाद 10 कैमो हुए हैं, MRI में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं शो करता, बट मेरा दौरा आना कम नहीं हुआ। सर मेरा लाइफस्टाइल ठीक है, आगे कैसे करना है प्लीज़ गाइड करें।
3: देखिए, ग्लियोमा के हमने बारे में भी थोड़ी सी बात भी करी थी। आपकी बातों से लग रहा है कि इनको ग्लियोमा का सर्जरी अच्छा हो गया है, कीमोथेरेपी जो हम स्टैंडर्ड देते हैं वो भी मिल गया है, और MRI में कोई चेंजेस अब नहीं है, तो ये अच्छी बात है। रही बात कि इनको दौरे पड़ रहे हैं, ब्रेन में कोई भी नुक्स पड़ जाए वो ग्लियोमा टिश्यू की वजह से हो सकता है, ऑपरेशन के स्कार की वजह से हो सकता है, चोट की वजह से हो सकता है, तो दौरे आना जो है वो एक अलग बात है। तो इनसे आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं कि आपको दौरे आए तो आपकी दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी आपकी दवा की मात्रा कम होने की वजह से दौरे आ सकते हैं, या एक या दो या तीन दवा भी देनी पड़ सकती है। तो इसमें इतनी चिंता की बात मुझे अभी नहीं लग रही है। अगर जो आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आपकी दवा की मात्रा बढ़ाकर या जरूर पड़ने पर एक या दो और दवा ऐड कर आपके दौरों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी ऐसा कभी ऐसी स्थिति होती है कि 4 दवा देने के बावजूद बहुत दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यूरोसर्जन दोबारा सोचते हैं कि जिस हिस्से से दौरे पड़ रहे हैं तो EEG करके या वीडियो EEG करके उस हिस्से को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कहाँ से दौरे पड़ रहे हैं, तो उस टिश्यू को भी निकाल के हम ऑपरेशन करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये पहले तो मुझे लगता है हमको दवा की मात्रा बढ़ा के ही एक बार ट्राई करना पड़ेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
4: हेलो, नमस्कार गुप्ता मैम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, रघुवीर सिंह ठाकुर
1: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नींद में झटके आते हैं ना किसी किसी में, जैसे हमारी फैमिली का भी है, तो जैसे एकदम सोते जैसे नींद आ जाती है तो हाथ एकदम झटका जैसे करंट लग गया हो, तो कभी कभी होता था सर, ये कैसे क्यों होता होगा सर, सब बताएंगे डॉक्टर साहब
3: जी। देखिए, नींद में जनरली या तो छोटे बच्चों में ऐसा फिनोमेना ज़्यादा होता है कि नींद में झटके आते हैं, जब आप भी आप स्ट्रेसफुल स्लीप होगी आपकी तो ऐसे झटके आ सकते हैं। तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन, कि आप जो है जब भी सोने जाएं तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि लाइट कम हो या अंधेरा हो, रूम का टेम्परेचर ऐसा एम्बियंट हो कि आपको ठंड ना लगे या सर्दी ना लगे, आप एडिक्वेट कपड़े पहन के सो रहे हैं, पोस्चर आपका ठीक हो, बिस्तर नीट एंड क्लीन हो, तो ये स्लीप हाइजीन जब भी आपका अच्छा होगा तो वो ठीक रहेगा। दूसरा, मन की स्थिति, आप स्ट्रेसफुल हैं और कुछ सोच रहे हैं, बहुत गंभीर बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ऐसे झटके आ सकते हैं। तीसरी बात, कुछ एक दो तरह के झटके भी होते हैं। एक होते हैं जब हम सोने जाते हैं तो शुरुआत में जैसे ही हल्की नींद आई एक झटका आ जाता है, वो स्लीप ऑनसेट जो होते हैं जग। एक होते हैं जब सुबह जगने वाले होते हैं, तो उस टाइम भी ऐसे यही सेम फिनोमेना हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अगर जो बहुत ज़्यादा झटके आ रहे हैं तो छोटी सी एक दवा दे के उन झटकों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लेकिन दूसरी बात और भी है, कभी कभी ये झटके दूसरी बीमारी ब्रेन के होने के कारण भी होते हैं। तो जब वो डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जरूर पड़ेगी तो CT scan MRI या EEG करेंगे, तो उसे ये पता चल जाएगा कि एक तो ये एपिलेप्सी

0: के दौरे नहीं है, और क्या दूसरी बीमारी के कारण ऐसे झटके तो नहीं आ रहे? तो झटके तो बड़े सिंपल चीज़ हैं, लेकिन वो बीमारी ब्रेन में कुछ और है जिसकी वजह से झटके आ रहे हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर साहब से बात करके इस बात को क्लियर कर लीजिए।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो,
2: नमस्कार आप दोनों को।
1: नमस्कार जी, आपका नाम है, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं सपना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे करीबन 6-7 साल पहले से पैर के नीचे में दर्द होता था, कौन से वहाँ पर, उसके कारण से फिर मुझे ऐसा लगा मुझे पूरी टांग में दर्द होने लगा, और मैंने काफी उसको ट्रीटमेंट लिया, विटामिन B12 भी मैं खाती रहती हूँ, मल्टीविटामिन भी मैंने काफी लिए, मगर मेरी टांग के दर्द की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और अभी लेटेस्ट मुझे फ्रोजन शोल्डर पहले एक बाजू में था, और अभी तो मुझे कुछ अजीब सा दूसरी बाजू में भी है, इन द सेंस कि मैं जैसे प्लेट पकड़ के खड़ी होती हूँ थोड़ी देर तक, खड़ी मतलब बैठ के जब भी मैं कुछ खा रही हूँ प्लेट अगर मैंने पकड़ी हुई है तो बाजू को सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अकड़ सी जाती
0: है। मैडम आपको डायबिटीज है?
2: नहीं, डायबिटीज
0: फैमिली में डायबिटीज है?
2: Type 2 था मेरे पेरेंट्स को।
0: तो आप अपनी ब्लड शुगर रेगुलर चेक करें जरूर जरूर से, क्योंकि कभी ऐसे देखा है जिन लोगों की डायबिटीज़ की टेंडेंसी हो फैमिली में और आगे जाके डायबिटीज़ होने वाली हो उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो जो शोल्डर की बात कर रहे हैं उसका तो सबसे अच्छा इलाज है कि डॉक्टर से बात करके एक्सरसाइज सीखिए, सिकाई करिए, और रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो 3 से 6 महीने एक्सरसाइज करने के बाद आपका फ्रोजन शोल्डर अच्छा होगा, 2-5 दिन में उससे आराम नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, जो आपने पैर में कॉर्न बताया वो तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट को या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉर्न के पैच आते हैं अलग अलग, वो लगा सकते हैं, या फिर बहुत डीप हो तो उसको सर्जिकली पैरों से निकालना पड़ता है। आपने एक जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपके पैरों में दर्द होता है, पैरों में दर्द जो होता है एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्लासिकली ऐसा होता है कि जब हम रात को सोने जाते हैं तब पैरों में दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये दर्द दिन में भी होने लगता है और कुछ लोगों को तो सारा दिन रहता है, लेकिन रात के टाइम पे ये ज़्यादा तकलीफ देता है। रात को मान लो थोड़ी देर सो गए फिर उठे फिर नींद नहीं आएगी क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है। ये बड़ी ऐसी अजीब सी बीमारी है जिसका कोई टेस्ट नहीं है जिसको हम करके बता दें कि ये RLS है। ये आपके डॉक्टर, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको देखेगा तो एक मिनट में आपके सिम्टम्स सुन के समझ जाएगा। उसकी पहचान ये है कि अगर जो आप पैर दबाएँ, कोई आपके पैर दबा दे तो आपको अच्छा लगने लग गया। जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप कहेंगे हमारे घर में नानी दादी मामी, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि रात को सोने से पहले पैर दबाते हैं तभी उनको नींद आती है, ये वही RLS है उनको भी, और ये फैमिली में रन करता है तो समझ में आ जाता है कि आपके परिवार में किसी को बीमारी थी तो वो आपको भी है। दूसरी बात, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे उस दिन ऐसा होगा, तो हो सके तो सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में, मतलब शॉवर चला के गर्म पानी से वो कर लें, या फुट मसाजर जो आते हैं मार्केट में 10 मिनट वो कर लें, या जो क्या बोलते हैं बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें पैर को मोड़कर हम बैठते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं जो आसन क्या होता है उसको मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो पॉस्चर है उसमें अगर जो बैठेंगे आप तो उससे जो काफ मसल्स हैं वो प्रेस हो जाएंगी, उससे भी एकदम आराम मिलता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें करने से, और आपके डॉक्टर को एक बार दिखाएं तो उसके लिए कुछ जांच भी करते हैं कि आपका कई बार आयरन लेवल कम हो तब भी ऐसा होता है। जब आपने बोला B12 तो ठीक है, लेकिन आयरन की भी जांच करा लें। और डॉक्टर साहब तो बोलिए क्या RLS बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि क्या ये वो बीमारी तो नहीं है? अगर जो ऐसी बीमारी है तो उसकी एक छोटी सी दवा देते हैं जो खाने के 1 घंटे पहले लेने से आपको इसमें तकलीफ में आराम मिल जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी अपने टेस्ट की बात करी तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बारे में पहले ही पता लगा सकें?
0: देखिए, ये सवाल तो आपने ऐसा पूछ लिया है जैसे कि रामबाण दवा जैसा, कि कोई एक ऐसा टेस्ट हो जाए जिससे हम सारी बीमारी पता है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जैसे ब्रेन का है तो CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, EEG करते हैं, जिससे कॉमनली सारी बीमारियों के, और बहुत सारे एडवांस पेट स्कैन आ गया है, पेट स्कैन में अलग अलग एफडोपा है, अलग अलग टाइप के स्कैन आ गए हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे आसान तरीका तो जनरली MRI करके उससे पता चल जाता है। जब हम न्यूरोपैथी की बात करें तो न्यूरोपैथी के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी बोलते हैं, उसमें साथ में EMG करने की ज़रूरत है या नहीं वो अलग बात है, तो उससे पता चल जाता है। मायोपैथी होता है तो उसमें EMG करके हम देखते हैं कि मसल की जो है किस टाइप का मसल इन्वॉल्वमेंट है, उससे वो पता चल जाता है, या जरूर पड़ने पर मसल एक स्किन से इंसीजन लगा के मसल का टुकड़ा लेके भी हम जांच करते हैं। तो ये तो हैं हमारे कॉमन टेस्ट। बीच में अपने बात करी थी एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी के लिए MRI करते हैं, आजकल इतनी सारी एंटीबॉडी आ गई वो हम चेक करके देखते हैं तो उससे भी पता चल जाता है।

0: से लेकर कई बार लोगों के उसमें मिथ भी हैं कि अगर किसी को ये अटैक हुआ है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो जुराब सुंगा दो या चम्मच डाल दो कुछ ऐसा, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए?
1: आई थिंक ये सवाल तो हमको पहले भी डिस्कस कर लेना चाहिए था पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एपिलेप्सी, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि एकदम जानलेवा नहीं होती है आपको, लेकिन भयानक जरूर दिखती है। तो जिसको पहली बार होती है उसके परिवार वाले भी डर जाते हैं, देखने वाले भी डरते हैं। तो जब किसी को भी अगर जो एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है तो तीन चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसको देखिए उसका सांस बराबर आ रहा है तो कपड़े ढीले कर दें। दूसरा, उसको 90 डिग्री करवट दिला दें, दोनों हाथ पर पकड़ के एक तरफ करवट दिला दें और 2 से 5 मिनट में वो दौरा अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्ट ये वॉच करना है कि ही इज़ ब्रीदिंग वेल। तीसरी बात बड़ी कॉमन जो आपने बोला कि लोग क्या करते हैं, जूता सुंघाते हैं, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक जब तक आप जूता डलाते हो या मोजा उतारते हो तब तक वो दौरा ठीक ही हो जाता है। तो लोग समझते हैं कि मोजा सुंघाने से ठीक हो गया, लेकिन जो आपने बात बताई कि मुंह में चम्मच डालना या उंगली डालना, ये बड़ा खतरनाक है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति में जब दौरा शुरू होता है तो दांत भिंचते हैं, उसके बीच में जीभ आ जाती है और वो जीभ कट जाती है। तो लोगों को लग रहा है उस जीभ को बचाने के लिए वो चम्मच डाल देते हैं। होता क्या, वो जबड़ा इतना ज़ोर से टूटता है कि जीभ तो बचे ना बचे उनके दांत जरूर टूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपनी उंगली डाल देते हैं, तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें उंगली लिटरली उनकी कट जाती है क्योंकि जबड़े का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो किसी की जीभ कटनी है तो वो, और जब तक आप कोई भी उपाय करते हैं तब तक वो कट चुकी होती है और वो जो आप देखते हैं आपको देखने में डर लगता है, लेकिन जैसा मैंने बताया 2 मिनट करवट दिला के देखिए कि सांस आ रहा है और गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ कर दें तो मुंह में जो भी लार बनी है या सलाइवा आ रहा है वो निकल जाएगा, वो लंग में नहीं जाएगा और देखिए कि 2 से 5 मिनट में होश आ जाएगा। एक बात, अगर जो 2 से 5 मिनट में होश नहीं आता तो ज़रूर हॉस्पिटल जाइए। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को दौरा पड़ा, बेहोशा, दोबारा दौरा पड़ना शुरू हो गया, तो ये ऐसी स्थिति है कि जब आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जरूर जाना चाहिए। तीसरी बात, उसके हाथ पैरों को मोड़ने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, दौरे में एक आदमी का हाथ मुड़ रहा है, मैंने ऐसा देखा है, 2 दोस्त जा रहे थे, एक को दौरा पड़ा, उसका हाथ मुड़ा, उसने सोचा हाथ मुड़ गया, उसको पूरा घुमा के दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया, उसका पूरा शोल्डर तोड़ दिया उसका। तो उसको मिर्गी से इतना नुकसान नहीं हुआ जिसके उसके दोस्त की मदद करने से नुकसान हो गया। तो प्लीज़ उसके शरीर को छोड़ दीजिए, चोट ना लगे आसपास ऐसी चीज़ें हो जिससे चोट लगती है उसका बचाव कर लीजिए और अपने आप मरीज को होश में आ जाएगा, फिर अस्पताल ले जाइए।
0: डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे, हम डायबिटीज़ की भी बात कर रहे थे, तो जो बीपी या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं?
1: देखिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ऐसा है, ऐसी बीमारियाँ हैं, पहली बात तो एक बार किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो मान के चलिए आपको ज़िंदगी भर ये बीमारी रहेगी। वो बीमारी कितनी सीवियर होगी वो उम्र के साथ में दवाओं के ट्रीटमेंट के हिसाब से। कुछ लोग सोचते हैं कि बीपी की दवा खाई तो मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी बीपी की दवा की मात्रा बढ़ घट सकती है। जनरली समर्स में पसीना ज़्यादा आता है तो बीपी अच्छा कंट्रोल होता है तो लोग दवा बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। अपने डॉक्टर से बात करके अपनी दवा की मात्रा कम कर लें और विंटर आए तो अपनी दवा की मात्रा दोबारा बढ़ा लें। रही बात कॉम्प्लिकेशन की, तो उससे ब्रेन पर असर पड़ता है। ब्रेन पर क्या असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई है तो स्ट्रोक हो सकता है। जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों, उनको स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है तो मिर्गी के द्वारा भी हो सकते हैं, न्यूरोपैथी हो सकता है डायबिटीज़ वगैरह जो नहीं अच्छी तरह का कंट्रोल है। डायबिटीज़ में अगर जो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये भी, तो बॉडी के ढेर सारे ऑर्गन आपके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं और जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। अगर जो समय से मैं आपको बताऊं, अगर जो 100 मरीज जो अस्पताल में आते हैं जो लकवा लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से 50 मरीज वो होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली दवा खाना बंद कर दिया है ये सोच के कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है।
0: लेकिन कई बार होता है ना कि डॉक्टर हमें 2 दिन की दवाई दे रहे हैं, 3 दिन की दवाई दे रहे हैं, 2 दिन बाद हमें ठीक सा महसूस हो रहा है तो हम खुद ही छोड़ देते हैं, तो वो सही है या गलत है और कितना गलत है?
1: 2 बातें, एक तो होता है कि 2-3 दिन में खाने के बाद अच्छा लग रहा है, इसका एक ही मतलब है कि आपको दवा सूट कर रही है, आपके लिए दवा इफेक्टिव है तो दवा बंद ना करें। दूसरी होती है, मैं 3 दवा खा रहा था अभी मैं सब कुछ ठीक, तो ऐसा करता हूँ 2 कर देता हूँ, ये भी गलत तरीका है। स्पेशली जो पार्किंसन के मरीज होते हैं जिनको हम लिवोडोपा नाम की दवा देते हैं, तो उनको, अगर मेरे श्रोता जो पार्किंसन के हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते
0: जी
1: हैं।
0: हमें मालूम है कि आपकी पार्किंसन में एक्सपर्टाइज है तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए,
1: इसीलिए मैं पार्किंसन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर जो डॉक्टर ने आपको 3 दवा लिखी है तो, और जिस समय से लिखी है उसी समय पर आप 3 दवा खाएं, क्या होता है 3 दवा खाने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं।

0: को लग रहा है तीन क्यों खाऊं, अब मैं दो खाऊंगा। तो उसका एग्जांपल ये है कि अगर जो आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आपको मान लो 10 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भराना है, तो आप 5 लीटर भरा के काम नहीं चला सकते। और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट तीन गोली की है, तो ये लिवर डोपा तो गाड़ी का पेट्रोल है पार्किंसन के लिए, तो आपको उतनी ही दवा खानी पड़ेगी और समय से खानी पड़ेगी, तभी आपका पार्किंसन अच्छा कंट्रोल रहेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरी भी नमस्कार, आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है।
1: अच्छा जी, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम

0: कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: अजमेर जी नमस्कार, आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है।
0: अच्छा जी, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, बताइए।
1: मैडम जी मैं राम, मेरा नाम राम मिलन है
0: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
1: तो मैडम जी दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ। मैं ये जो अभी आप लोग चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे दौरा और मिर्गी के बारे में
0: जी,
1: तो इसके उपचार और इलाज के बारे में मैडम जी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भांजे को ऐसा होता है ना।
0: अच्छा ठीक है, बताएं।
1: तो इसके विषय हाँ थोड़ा सा चर्चा करिए और बताइए आप लोग जो हो सके तो।
0: वैसे डॉक्टर साहब काफी बता चुके हैं,
2: राम मिलन जी, ये हमने
0: जी।
2: सारी बात अभी बहुत विस्तार में बताई है, फिर भी एक लाइन में ही बता देता हूँ कि जब भी मिर्गी के दौरे होते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि असली में मिर्गी के दौरे हैं या नकली मिर्गी के दौरे हैं।
1: मैं लाइन से अलग होकर एफएम में सुनता हूँ, यहाँ वॉइस आप लोगों की कम।
2: ठीक है, सुनिए आप, तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिर्गी के दौरे असली हैं या नकली, वो डॉक्टर आपकी जाँच करके बता देगा। दूसरा, मिर्गी के दौरे जब भी होते हैं उसमें ज़्यादातर 60% मरीजों को एक दवा देने से मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग दवा बंद कर देते हैं। इस दोबारा दौरा पड़ने का सबसे कॉमन कारण है कि आप दवा बंद कर देते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे। जब भी एक मिर्गी का दौरा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि 6 महीने से 3 साल कम से कम दवा देते हैं। किसको 6 महीने देना है, किसको 3 साल देना है, ये आपका डॉक्टर आपके बीमारी के प्रोफाइल के हिसाब से देख के बताएंगे आपको।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम नसों की के ऊपर बात करें तो नसों की कमजोरी या न्यूरोपैथी, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से हो जाती है ये?
2: जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ये पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो जैसे हमारे घर में बिजली की वायरिंग है उस तरह से पूरे शरीर में वायरिंग है जिसको हम नसें बोलते हैं या नर्व्स बोलते हैं, और इनका काम जो है ब्रेन के सिग्नल को मसल तक, स्किन तक, सब्जी के सारे ऑर्गन्स तक पहुँचाना है। तो इसकी कोई भी बीमारी है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। और आप पूछे कि क्या कॉमन कारण है, तो डायबिटीज़ सबसे कॉमन कारण है। अगर जो 100 मरीज देखूंगा जिनको न्यूरोपैथी है तो उसमें से शायद 50-60-70% लोगों को डायबिटीज़ होगा। ये वो लोग होंगे जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होगा, जिनकी डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल नहीं रही होगी। कभी कभी जिन लोगों को कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी देते हैं उनकी वजह से भी ये बीमारी होती है। एक होती है बीमारी जब आपने न्यूरोपैथी की बात, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, हाथ में दर्द होता है। कब होता है, ज़्यादातर रात में या शाम को या काम करने के बाद, जो गृहणियाँ जो खाना बनाती हैं या जहाँ पे हाथ में रिपीटेडली फ्लेक्शन मतलब मूवमेंट हो रहा है उसके बाद वो दर्द होता है। किसी भी को भी हाथ में दर्द होता है उनको डॉक्टर से जाकर पूछना चाहिए कि क्या मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो नर्व कंडक्शन करके उसकी जाँच करके हम कन्फर्म कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इंजेक्शन लगाकर या दवा देकर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं जो लंबे टाइम तक लेने के बाद, जैसे टीबी की कुछ दवाइयों से होता है और लीवर में अगर जो एप्सिस होता है उसकी दवा लेने से होता है, उनके कारण भी न्यूरोपैथी हो सकता है। अनकॉमन होता है जैसे वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है नसों के अंदर, उससे भी होता है। एक जो बड़ी अचानक होने वाली बीमारी होती है जो बोलते हैं एक्यूट डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आदमी बिल्कुल ठीक था, आज सुबह उठा तो उसको लगा पैरों में थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, उठने में दिक्कत है, शाम तक वो दिक्कत बढ़ गई, कल तक इतनी हो गई कि वो उठ भी नहीं पा रहा है। आप सोचिए 24-48 घंटे में आदमी बेड बाउंड हो गया, ऐसा भी हो सकता है, जो कि डीमाइलेटिंग डिसऑर्डर है, जो पब्लिक जो हो सकता समझ पाए इस बात को कि उसको बोलते हैं गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो गया, GBS हो गया, GBS हो गया, बड़ा कॉमन वर्ड है ये। तो उस बीमारी में आपको समय से अस्पताल जाना चाहिए और समय पर इलाज शुरू करने से उस बीमारी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी मरीज देर से आते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी इन्वायरमेंट भी जाता है तो उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। किसी भी मरीज को इस बीमारी में अगर जो पहले हफ्ते के अंदर अंदर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट आ गई है तो इसका मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा थी, उसकी रिकवरी स्लो होगी और कभी महीनों जाके टाइम लगेगा जब वो रिकवरी होगी।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी इलाज की बात करी तो क्या कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट है इस फील्ड में?
2: हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पार्किंसन, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ है उस पार्किंसन में। एडवांसमेंट क्या है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो दवाइयाँ बहुत नई नई आ गई हैं, तो दवाओं की तो एक बात करेंगे। जब पार्किंसन बहुत एडवांस हो जाता है तो दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, लेकिन उसी दवा का साइड इफेक्ट होने लगता है। तो कैच-22 सिचुएशन ये है कि हमको दवा बढ़ानी है लेकिन दवा बढ़ाने से साइड इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ब्रेन का सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं ऐसे ब्रेन के अंदर पेसमेकर डाल देते हैं और बाहर से उसको प्रोग्रामर से उसको एडजस्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे पैरामीटर सेट

0: करके हम उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम डीबीएस सर्जरी करते हैं तो उसकी दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है। जब दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है तो दवा से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं और भी एडवांस में जो बोले कि अब ये अपने आपने सुना होगा, एक अल्ट्रासाउंड से भी ब्रेन के अंदर सर्जरी कर रहे हैं। वो हर मरीज के लिए नहीं है, पहली बात तो ये सुन लीजिए। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको डॉक्टर देख के डिसाइड करके बता सकता है कि इस मरीज को ऐसा सर्जरी करने का फायदा हो सकता है। उन्हीं मरीज में हम डीबीएस भी कर सकते हैं। एक तो ये एडवांसमेंट है। दूसरे इन्वेस्टिगेशन में आजकल जैसे अलग अलग टाइप के पैट स्कैन आ गए हैं, जैसे पार्किंसन में डोपामिन लेवल कितना है ब्रेन का वो हम जांच कर सकते हैं। दूसरा अब जो नया आने वाला है, जो अभी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है, वो है ब्रेन के अंदर एमायलॉयड कितना है वो देख सकते हैं। जैसे डिमेंशिया की आज हमने इतनी बात नहीं करी है, लेकिन डिमेंशिया भी एक ऐसा बीमारी है जो डिमेंशिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको हम डिमेंशिया एज ए ग्रुप बोलते हैं कि आदमी को मेमोरी उसकी कम होती जा रही है। तो कॉमन जो डिजेनरेटिव होता है जो कि उम्र के साथ बढ़ता जाता है वो होता है जिसमें एमायलॉयड डिपॉजिट होने लगता है, तो एमायलॉयड पैट करते हैं जिससे पता चल जाता है। उसके लिए आपने बहुत सुना होगा कि आजकल ब्लड सैंपल भी ले रहे हैं, तो ब्लड सैंपल में पर्टिकुलर टाइप का एमायलॉयड का प्रोटीन का कितना रेशियो है वो देख के भी वो जज कर सकते हैं। और दवा की बात करें तो उसके लिए कुछ नई अभी बहुत एडवांस दवाइयाँ आई हैं जो कि अल्जाइमर्स के लिए ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम दें तो उनसे ऐसा मानते हैं कि उन मरीजों को फ़ायदा हो सकता है।
1: दवाइयों के अलावा अगर हम फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन की बात करें तो उसका क्या रोल रहता है?
0: देखिए, रिहेबिलिटेशन जो है ना वो ऐसा है कि अगर तो जब हम चाय बनाते हैं तो एक तो चाय आप छोड़ दीजिए उबल जाएगी, आपने देखा हो चाय वाला उसको बीच बीच में हिलाता भी रहता है तो वो चाय का टेस्ट बदल रहा है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है, जिनको वीकनेस आई है चाहे वो लकवे के साथ तो ही हो, न्यूरोपैथी की वजह से हो, मायोपैथी की वजह से हो, तो अगर जो आप रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज बराबर करते हैं तो उसी बीमारी की रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आज हम इतने डिस्कस नहीं पा रहे, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन जनरल आर प्रोग्रेसिव, और जब वो प्रोग्रेसिव है तो आपको इतनी अच्छी एक्सरसाइज करनी है कि आपकी मसल की पावर बनी रहे और बीमारी से आप आगे निकल जाएं। ऐसी एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसमें भी मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं तो उसमें भी वो प्रोग्रेसिव होती है। तो अगर जो आप खूब एक्सरसाइज करके अपनी मसल की पावर को मेंटेन कर लेंगे तो यहाँ ये रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम लकवा होने के बाद अगर जो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। एक और भी जो बात आज हमारे शायद समय की व्यवस्था के कारण नहीं हो पाई कि मन की स्थिति, मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ खुश रहो। अब मरीज बोलते खुश रहो क्या बीमारी है, मतलब खुश रहने का क्या मतलब है, कैसे खुश रहेगा? तो ये जो खुश रहो वाला जो तरीका है वो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। जैसे आपने मेरी चॉइस के गाने लगाए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा मेरे गाने सुन के,
1: आप हमारे शो में आए हमें भी खुशी हुई।
0: जी, ऐसे कोई आते हैं जो स्पिरिचुअल, उनको भगवान के भजन में बड़ा मजा आता है, वो उसमें खुशी ढूंढते हैं। प्लेयर जो होते हैं उनको खेल के बड़ा मजा आता है। जिन लोगों को दौड़ने की आदत पड़ जाती है वो जब तक 5-10 किलोमीटर दौड़ के नहीं आए उनको खुशी नहीं मिलती है। तो हर आदमी की खुशी अलग है, वो हर आदमी अपनी खुशी अलग जगह ढूंढता है।
1: लेकिन अगर कोई मरीज है किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वो उसके साथ अपना जो डेली लाइफस्टाइल है वो कैसे फॉलो करे, अपने डेली रूटीन कैसे जिए, क्योंकि वो कई बार उस चीज़ में चला जाता है कि हाँ इस बीमारी हो रही है।
0: ये तो बहुत कॉमन बात है, उसके लिए मैं मरीजों को एक बात बताता हूँ कि भगवान ना करे किसी की टांग टूट जाए तो अब दो तरीके हैं, या तो अपनी टांग को देख देख कर रोज परेशान हो जो कि कई बार लोग करते हैं, दूसरा है उसमें बढ़िया सा कलर वाला प्लास्टर लगाओ, दोस्तों को बुलाओ, उस पर ऑटोग्राफ लो, पता है 3 महीने में ठीक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग रखना और पॉजिटिव रखना, उन्हीं को मैं बोलता हूँ कि खुश रहिए तो आप अच्छे रहेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आपने काफ़ी हमें जानकारी दी कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में, तो जाते जाते आप क्या संदेश हमारे श्रोताओं को देंगे? लेकिन उससे पहले एक मैसेज आया है, मैं मैसेज ज़रूर लूँगी शॉर्ट में, बेशक उनको हम मैसेज दे दें। वो लिखते हैं, शिल्पा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, आजकल मिडल एज में ही लकवे की प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या रीज़न है, पर्यावरण या खान पान, कृपया बताएं। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से। शॉर्ट में आप बता दीजिए।
0: नरदेव सिंह जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है, क्योंकि ये आपकी नहीं हमारी भी बड़ी समस्या है। 30 साल का यंग लड़का, 22 साल का यंग लड़का, उसके 2-3 कारण है। एक तो ब्लड प्रेशर बहुत यंग एज में होने लगा है, डायबिटीज यंग एज में होने लगा है, खान पान इतना खराब।

0: स्कूल में 50% बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, तो ये कारण है। तीसरा है कि हम हेल्थ चेकअप नहीं कराते। स्मोकिंग इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉज, और रेगुलर चेक करने के बाद में जो है पॉल्यूशन एक दूसरा कारण है। अभी मैं देख रहा था जब 400 वो होता है तो हम 10 सिगरेट के बराबर 40 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है।
1: तो डॉक्टर साहब, जाते जाते शॉर्ट में मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिससे वो स्वस्थ रहें और खुश रहें?
0: हाँ, खुश रहें वो तो हमने बता दिया। एक हमेशा खान पान का ध्यान रखना है कि स्वस्थ खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मन की स्थिति को अच्छा रखें, और अगर भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी हुई है तो उसको समझ के उससे आगे निकल जाए
1: और शांति से उसका सामना करें। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि न्यूरोलॉजिकल रोगों के लक्षणों को समय रहते पहचानना और उचित उपचार लेना कितना आवश्यक है। सही जानकारी, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इन समस्याओं से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद शिल्पा जी।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर उबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के

0: लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की, जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया। आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, अस्सी का दशक था, तब

0: सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूं कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपके गांव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया
0: जी।
1: 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था
0: जी, जी।
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी जी, थी जी। BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे जी। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप उस अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी,
0: इन कंट्रीज के। तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
1: बिल्कुल।
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल।
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
0: राइट देन, तो आप अभी CTC में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल।
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
1: बेसिकली जो हमारा CTC है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
0: जी। जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती

0: डोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप CTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिएबली रहता ही था।
1: जी जी,
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है, तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है,

0: फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
1: जी,
0: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
1: जी,
0: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना, और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
1: जी,
0: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया, और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
0: जी,
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
0: जी,
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है, तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे, तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है, और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला उसे रख कर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांवों में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत,
1: ये सब एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को टेलरिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ

0: मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
0: जी,
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
0: जी,
1: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
0: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
1: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे। ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
0: पनिशमेंट।
1: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं। जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
0: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ, मैं ज़रूर बता चाहूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशन कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे IG सर थे श्री संजय कुमार, हमारे DIG सर श्री सुमित जोशी
0: जी,
1: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के SP थे श्री YS रमेश, उसके अलावा CRPF के जो ASP ऑफ्स थे इमानुल बास्की और RC मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे IG सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद

0: आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी,
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसाफ इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज़ के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहाँ जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल। ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कॉम्पिटिशन है और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम कर रहे हैं आगे जाके।
0: बिल्कुल।
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप
0: बिल्कुल
1: दे रहे हैं।
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी,
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है, तो बहुत अच्छा।
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं, तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
0: बिल्कुल।
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल। मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती
0: हूँ। बिल्कुल।

0: ऐसे शहरों में आके लोग कहते हैं, पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन. आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था. तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं?
1: हाँ, बिल्कुल. हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं जी, तो जी. उसके बाद एक परंपरा है पाता जाने की. जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है. तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है. और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है. तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है.
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो.
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा. मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही.
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी.
0: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं. तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं. बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से वो उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है. बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं. तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए.
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है.
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स.
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं. और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बनाने जा रही है. और मैंने देखा है कि महिलाएँ भी बहुत जगहों पर, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए. वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है. और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं. उनकी सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी.
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: हूँ. बिल्कुल,
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद हैं ललित शाह जी। तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व तो ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सी टी सी एस एस बी श्रीनगर से

0: हूँ। सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं महेश सिंह जी। कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद। विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर। यश गुप्ता लिख रहे हैं वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं।

0: आप पहचान गए होंगे
1: जी,
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद। विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर। यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी?
0: ऑलराइट। यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफकोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी। जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफकोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल।
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सेलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके।
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है।
0: okay.
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: ऑलराइट
1: जी।
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट। TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी।
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSB सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिट

0: जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके,
1: जी
0: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नज़र रख
1: तो
0: पाएंगे।
1: यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया,
0: नहीं
1: एआई का
0: नहीं
1: जमाना आ गया,
0: वो
1: आप
0: तो
1: लोग
0: नहीं।
1: एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
0: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं,
1: जी जी
0: बट
1: जी
0: ये है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत
1: एब्सोल्युटली।
0: सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
1: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे।
0: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद
1: जी
0: जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
1: तो
0: हुई है।
1: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
0: बिल्कुल
1: हम
0: हम भी
1: बिल्कुल
0: तैयार हैं, बिल्कुल
1: चौकन्ने हैं।
0: बिल्कुल।
1: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा
0: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
1: है। महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा।
0: धन्यवाद।
1: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊँगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
1: दोस्तों एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
1: अच्छा।
0: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूं जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूं।
1: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के

0: नहीं सुना है कुछ, ट्राई कर सकते हैं।
1: नहीं बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं।
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

0: वेलकम बैक टू द शो युवानी. तो सुन रहे हो 102.7 FM ते युवानी प्रोग्राम चल रहा है. ते तुसी हुने गाना एंजॉय कीता साडे नाल ते आकाशवाणी जलंधर दी आवाज विच. हुण युवानी पेश कर रहे ने आरजे काव्या ते
1: आरजे जप्स.
0: ते हुण समा हो चुका है एक नवे सेगमेंट लई जे तुसी फैशन स्टाइल पेजेंट्स दे बारे जानना चाहते हो. ते साडा हुण नेक्स्ट एन इंटरव्यू ते एक रिकॉर्डिंग सैगमेंट साढ़े एक होर युवाणी एंकर ने जो रिकॉर्ड किया जरूर सुनियो. तो इनफैक्ट जब्स साढ़े स्रोते दस दिए जिसकी यह रिकॉर्डिंग है वह साढ़े जलंधर की वसनीक तो साढ़े जलंधर का ना भारत में रोशन करने वाली कुड़ी
1: यशिका शर्मा है.
0: यशिका शर्मा उन्होंने फेमिना मिस इंडिया नॉर्थ का टाइटल जीता है. तो असी उन्होंने गल्लां बातें कीतियां ने उन्होंने जर्नी बारे. तो जे तुसी पेजेंट विच जाना चाहते हो तुसी जरूर सुनो ये. तो असी उम्मीद कर रहे तुहानू जरूर पसंद आया होगा.
2: नमस्कार दोस्तों, FM एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते मैं हां तुहाड़ी दोस्त ते होस्ट आरजे नेहा. ते प्रोग्राम चल रहे युवाणी ते सेगमेंट तुसी एंजॉय कर रहे हो नवी दिशा. दोस्तों आज दी नवी दिशा विच असी तुहानू मिलवान जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत दे नाल जिसने अपने सुपनयां नू सिर्फ वेख्या ही नहीं है सगो उहनां नू अपनी मेहनत ते हौसले ते लगन दे नाल हकीकत विच भी बदलिया है. हर कामयाबी दे पिछे एक संघर्ष हुंदा है. कई अजिहियां रातां हुंदियां ने जदों इंसान खुद ते भी शक करन लग जांदा है, पर जो अपने सुपनियां ते भरोसा रखदे ने ना ओ एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचदे ने. अज साडे नाल साडे स्टूडियो विच मौजूद ने फेमिना मिस इंडिया नॉर्थ 2026 दा टाइटल अपने नाम करन वाली यशिका शर्मा.
3: हेलो जी, सत श्री अकाल सारयां नूं.
2: सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारक तुहानू साडे पंजाब दा मान वधाउण लई ते इन्नी वड्डी अचीवमेंट लई. यशिका, अपनी गलबात शुरू करन तो पहला मैं चाहनी हां कि असीं तुहाडे विनिंग मोमेंट नू एक वारी दोबारा सुनिए ते उहनू महसूस करिए.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, फेमिना मिस इंडिया नॉर्थ जोन गोज टू कंटेस्टेंट नंबर 1 यशिका शर्मा फ्रॉम पंजाब.
2: यशिका, असी सुने है कि तुसी नेशनल लेवल पेंटर भी रह चुके हो ते पेंट ब्रश तो लेके मेकअप ब्रश दे सफर दी शुरुआत तुहाडी किवें शुरू हुई?
3: मैं अपनी मॉडलिंग दी जर्नी दी शुरुआत कीती सी जदों मैं 13 साल दी सी ते हुण 6 साल होण लगे है ते मैं इस मॉडलिंग दी जर्नी विच बहुत ही ज़्यादा अपने आप नूं कॉन्फिडेंट बनाया, बहुत ही ज़्यादा सीखण नूं मिले, बहुत ही ज़्यादा नवे एक्सपीरियंसिस सी. जदों पेंटिंग स्कूल विच करदी सी ओह पता ही नहीं लगा कदों स्टेट तो नैशनल ते पहुँच गई ते नैशनल जदों जित गई इंडिया दे टॉप 25 आर्टिस्ट विच पहुँच गई ते ओह भी एक बहुत प्राउड मोमेंट सी.
2: इन्नी सारी अचीवमेंट्स तो बाद तुहाडी लाइफ विच जिहड़े चेंजेस आए ने ओह चेंजेस किवें दे रहे ने?
3: सब तो वड्डा चेंज आ आया कि मैं हसना बहुत ज़्यादा सीखिया, क्योंकि उत्थे जाके ना उन्होंने एक चीज़ कही सी जे तुसी किसी नूं स्माइल पास कर देना हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी ही तुहानू वापस मिलती है. तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग कर दी हूँ, हमेशा सारे नूं स्माइल नाल ग्रीट करना ते 24 घंटे बस खुश रहना.
2: बिल्कुल सही कहे, तुसी हसदे हुए काफ़ी प्यारे भी लगते हो.
3: थैंक यू सो मच.
2: तो यशिका, मिस इंडिया दे स्टेज ते तुहानू लोकी देखदे आ ते तुहानू लोकी बहुत पसंद करदे आ, ते बचपन वाली यशिका किवें दी सीगी? कि उस टाइम भी तुसी मॉडलिंग ते ग्लैमर बारे ही सोचदे सीगे या तुसी कुछ होर सोचदे सीगे, तुहाडे सपने कुछ होर सीगे?
3: जदों मैं 8th क्लास विच सी उदों मैं मॉडलिंग स्टार्ट कीती सी ते मेरी जर्नी हमेशा ही बहुत ही वधिया रही है. मैं जदों स्टार्ट कीता सी ना उदों मैं बस एक छोटा जिहा फैशन कॉम्पीटिशन विच पार्ट लिया सी ते मैनूं लगा सी चलो जस्ट फैंसी ड्रेस कॉम्पीटिशन है ते मेरे पेरेंट्स नूं भी यही लगा कि चलो फैंसी ड्रेस कॉम्पीटिशन है, कोई गल नहीं, भेज दिंदे आ. पर हौली हौली करदे करदे जदों मैं होर शोज़ कीते, मैं सारे शोज़ जीतती गई ते मेरे पेरेंट्स ने मेरा पोटेंशियल देखिया ते उन्होंने कहा कि नहीं तू ये कर, तू जीत रही है ते असीं तैनूं सपोर्ट करांगे. मेरी फैमिली दा हमेशा तो ही सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली ने हमेशा कहा जिदे विच तुसी चंगे होना तुहानू हमेशा उस चीज़ नू कंटिन्यू करना चाहिए.
2: ते यशिका, मैं जानना चाहती हूँ तुहाडी जिहड़ी हुण तक दी अचीवमेंट्स रही हैं ओह कीड़ियां कीड़ियां रही हैं?
3: मैं जदों 13 साल दी उम्र विच

थैंक यू सो मच जी, मैंने भी बहुत ही बढ़िया लगा कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाई थ्रू ऑल इंडिया रेडियो। मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया गया, तो मैं होप करूँगी जिन्हिया भी कुड़ियाँ इस इंडस्ट्री में आनिया चाहदियाँ ने वो इंस्पायर हों, तो वो भी बहुत ही बढ़िया करें। इस दे नाल ही मैनू आरजे नेहा नूं दिओ इजाजत, नमस्कार।

0: वेलकम बैक टू द शो योवानी. तो सुन रहे हो 102.7 FM ते शो योवानी चल रहा है. तो एक मजेदार वधिया तड़क फड़क वाले गाने, तो एक बहुत ही वधिया ते इंटरेस्टिंग सेगमेंट असी सुनिया अपने आज नेहा दे नाल ते यशिका शर्मा दे नाल. उन्हां दी पेजेंट दी जर्नी, उन्होंने की सीखिया ते किवें हुंदी असली लाइफ पेजेंट्स दी, मैनूं तो बहुत ही वधिया लगा ते बहुत ही इंटरेस्ट हुंदा है ज़्यादातर कुड़ियों नूं फैशन विच. ते जब सानूं भी बहुत ही लगा कि किवें होंदी है असली ब्यूटी लाइफ.
1: बिल्कुल, उन्हां दे जिहड़े थॉट्स ओपिनियन सीगे फैशन रिलेटेड बहुत ही इनक्लूसिव सीगे. जिस सामने उन्होंने कहा कि हर तरह दा कोई भी पर्सन, उन्हां दी बॉडी नहीं मैटर करदी, उन्हां दा फेस वैल्यू इन्नी मैटर नहीं करदी, उन्हां दा सिर्फ कॉन्फिडेंस ही मैटर करदा है. ते सानू भी सिक्ख्या दिंदी कि असीं भी पेजेंट से जा ही सकते हैं.
0: बिल्कुल जरूर असीं भी जा सकते हैं जो साडे विच आत्म विश्वास है. ते असीं कैमरा ते पेजेंट दी लाइफ ते तुसी भी स्टेज ते अपना नाम बनाना चाहते हो ते मैं तो जब्स भी शायद ट्राई कर सकते हैं.
1: ट्राई करांगे यार.
0: बिल्कुल, तुसी भी सानू शायद देख सकते हो स्टेज ते.
1: बिल्कुल.
0: ते असी उम्मीद करते हैं जो भी जिसने भी साडे स्रोतियां ने सुनिया ते जरूर इंस्पायर होए होणगे. ते हुण इसी इंस्पिरेशन दे नाल असी प्यार जज्बात इमोशन नाल असी चलते हैं अगले सैगमेंट ते.
1: सो दोस्तों, हुण साडा सैगमेंट शुरू होण वाला है टेक टॉक्स, जिहदे विच असी टेक्नोलॉजी रिलेटेड गल्लां करांगे. तुहानू कुछ न्यूज़ दवांगे, जिहड़ी न्यू न्यूज़ आईआं ने वर्ल्ड च चल रहीआं चीज़ां टेक रिलेटेड, कोई भी डिवेलपमेंट होई है उहदे बारे असी तुहानू दस्सांगे.
0: ते हुण पहली जिहड़ी आपां न्यूज़ लै के आए हाँ ते बड़ी ही खास न्यूज़ है. देखो सानू सट्टां तां सारिआं नूं लगदीआं ने, ते इह सट्टां नूं सही करन लई असीं इक चीज़ बनदे हाँ जो है पट्टियां. ते विज्ञानिकां ने एक स्मार्ट बैंडेज तैयार कीती है जो इन्फेक्शन दी पछाण करके लोअर पेन ते एंटीबायोटिक रिलीज़ कर सकती है. ਭਾਵਿਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਮੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ.
1: ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਂਡੇਜ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ.
0: ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਨੀਮੀਆ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਕੱਢੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਫਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਵਰਗੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਰਾਤ. ਇਸਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ

0: खून पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है, जिस नाल खेती, जल प्रबंध ते आफत निगरानी नू मजबूती मिलेगी।
1: बिल्कुल, ये बहुत टेक्नोलॉजी जिहड़ी इसरो दी है, जिन्हें न्यू चीज़ां लैके आई है, जिहदे नाल सानू जल दे बारे पता चल रहा है ते खेती दे विच किद्दां इस्तेमाल करनी है उस टेक्नोलॉजी नू उहदे बारे पता चल रहा है।
0: ते असी उम्मीद करदे हां कि साडे स्रोतियां नू ये न्यूज़ वधिया लग रही होएगी। ते भारत दी सैटेलाइट ने ते इसरो ने जो भी डिवेलपमेंट कीती है, इस नूं असीं लैके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ। तो असीं उम्मीद करते हैं कि तुहानूं ये न्यूज़ वधिया लग रही होएगी। असीं होर न्यूज़ लैके आने हैं, तद तक तुसीं ये प्यारा जगह इंजॉय करो। मैं ते जॉब्स लैके आने हैं होर खबरां।

0: कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलां च तेरे वीरा तो कोह दूर निकल जाएगी।
1: जस चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बात सब कुछ फुला देवे।

FM 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। मैं हाँ आज राजवीर ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। प्रोग्राम दा नाम है लव यू जिंदगी। इस पूरे यार दे विच जेकर लग रहा है कि यार कुछ हो नहीं रहा, लाइफ सही नहीं चल रही, अजे भी लग रहा है कि मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी कितने ना कितने लग रहा है कि नहीं आ स्टेप दे उत्ते जाके हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन इस हार दे विच तुहानू वो हर्डल्स नहीं, वो एक्चुअल दे विच थोड़ी लाइफ स्टोरी चल रही है, उहदे बारे जानकारी मिलेगी। गल करते हैं एक छोटी जी कहानी है। कहानी का नाम है चट्टान अते दरिया। कहिंदे कि एक पहाड़ी इलाके दे विच

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारों की छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सर्वोच्च अदालत ने एक इतिहासक फैसले च कहा घरेलू औरतों का काम सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं, उन्हां दा परिवारां ते आउण वालियां पीढ़ियां दे निर्माण विच बेमिसाल योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग मध्य प्रदेश तो राज्यसभा लई बिना मुकाबला चुने गए। हरियाणा सरकार ने सूबे भर के स्कूलों के 8वीं जमात के इतिहास के पाठक्रम च सिख गुरुआ ते बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास शामिल किया। पंजाब के खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वालों बठिंडा 140 क्विंटल गैर कानूनी खाद जब्त। अफसरां अचनचेत चैकिंग विच तेजी लियाउण दे हुकम। फरीदकोट फिरोजपुर सड़क ते एक कार ते मोटरसाइकिल दी टक्कर विच इको परिवार दे 3 जणियां दी मौत, 2 गंभीर जख्मी। अते मौसम विभाग वालों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच अज ते कल लई गरज चमक दे नाल गड़ेमारी होण बारे ओरेंज अलर्ट जारी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। सर्वोच्च अदालत ने एक इतिहासक फैसले विच कहा कि घरेलू औरतों का काम सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं, सगों ओ परिवारां ते आउण वालियां पीढ़ियां दे निर्माण विच बेमिसाल योगदान दिंदियां ने। अदालत ने कहा कि घर दा प्रबंधन करन वाली औरतां नूं सिर्फ घरेलू औरतां कह के संबोधन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द समाज विच उन्हां दे योगदान नूं कमजोर करता है। जस्टिस संजय करौल ते एन कोटेश्वर सिंह दे बेंच ने जोर दे के कहा कि देखभाल ते घर दे प्रबंधन समेत घरेलू काम बहुत महत्वपूर्ण हुंदा है। यह फैसला पंजाब च एक वाहन हादसे नाल संबंधित है, जिथे नवंबर 2001 विच एक औरत दी सड़क हादसे विच मौत हो गई सी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग मध्य प्रदेश तो राज्यसभा लई बिना मुकाबला चुने गए ने। नतीजों के ऐलान तो बाद टर्निंग अफसर ने चोण दा अधिकार दा सर्टिफिकेट सौंपिया। बीजेपी के राष्ट्रीय ढांचे विच एक प्रमुख पंजाबी चेहरा अते अमृतसर के एक सीनियर नेता श्री चुग तो हुण तो संसद विच मध्य प्रदेश नाल संबंधित मुद्दे उठाउण ते अपने गृह राज पंजाब दीआं उम्मीदां ते खरा उतरन दी दोहरी जिम्मेवारी लैण दी उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने सूबे भर के स्कूलों के 8वीं जमात के इतिहास के पाठक्रम च सिख गुरुआ और बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास शामिल किया। स्कूली विद्यार्थियों को हुण सिख गुरुआ के नालों नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर की कुरबानी, शहादत, आदर्शों और स्थाई विरासत बारे जानण का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा च आयोजित हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब के 350वीं शहीदी पुरब दौरान ऐलान किया कि सिख इतिहास गुरुआ दिख्यावान और उन्होंने बेमिसाल कुरबानियां स्कूल सिक्ख्या शामिल किया जाएगा ता जो आने वाली पीढ़ियां इस अमीर विरासत तो जाण हो सकन। श्री सैनी ने कहा कि सारे सिख गुरुआ ने मनुखता, समानता, निस्वार्थ सेवा, दया भाईचारा ते समाजिक न्याय दीआं कदरां कीमतां दा प्रचार कीता है। उन्हां समाज नूं जात, धर्म अते वर्ग दीआं वंड तों उपर उठण ते मनुखता दी भलाई लई काम करन वास्ते प्रेरित।

नमस्कार, पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। सर्वोच्च अदालत ने एक इतिहासक फैसले च कहा है कि घरेलू औरतां दा काम सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं, उन्हां दा परिवारां ते आउण वालियां पीढ़ियां दे निर्माण च बेमिसाल योगदान है। भारत ने ओमान दे तट ते पलाऊ झंडे वाले टैंकर एमटी स्टेबलो ते होए हमले दी सख्त निंदा कीती। हमले च 3 भारतीय नागरिकां दी जान चली गई। सरकार ने साइबर अपराधियों वालों सुरक्षा प्रणालियों ते वित्तीय बुनियादी ढांचे नूं पैदा हो रहे वध रहे खतरे बारे चेतावनी जारी की है। भारतीय जनता पार्टी दे कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग मध्य प्रदेश तो राज्यसभा लई बिना मुकाबला चुने गए ने। हरियाणा सरकार ने सूबे भर के स्कूलों के 8वीं जमात के इतिहास के पाठक्रम च सिख गुरुआ ते बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास शामिल किया। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिशन दे चेयरमैन जसवीर सिंह गड़ी ने तरक्की मामलों च हकदारां नूं न्याय देण लई रोस्टर रजिस्टर चैकिंग कमेटियां दी सिखलाई तुरंत यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते ने। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वल्लों बठिंडा च 140 क्विंटल गैर कानूनी खाद जब्त। अफसरां नूं अचनचेत चैकिंग च तेजी लियाउण दे हुक्म जारी कीते गए। फरीदकोट फिरोजपुर सड़क ते एक कार ते मोटरसाइकिल दी टक्कर च इको परिवार दे 3 जणियां दी मौत, 2 गंभीर जख्मी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस वल्लों सरहद पारों नशीले पदार्थां दी तस्करी करन वाले एक गिरोह दा पर्दाफाश। 2 नाबालिगां समेत 6 मुलजमां नूं 30 किलोग्राम तो वध हैरोइन समेत कीता गया गिरफ्तार। मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च अज ते कल लई गरज चमक नाल गड़ेमारी होण लई ऑरेंज अलर्ट जारी। एसएनएफएम न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तो कुछ पल बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम एंजॉय करोगे, फिल्मी दुनिया।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने हरीश हाजिर है जी लैके तुहाडे फेवरेट वाले प्रोग्राम्स नू और एफएम रेनबो ते महफिल सज चुकी है। हरीश आ चुका है और स्टार्ट हो चुका है साडा प्रोग्राम। वैसे तो सारे प्रोग्राम्स ही तुहाडे फेवरेट होंदे ने और हर एक प्रोग्राम दा अलग नज़ारा है, अलग एंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट है, मस्ती है और हर एक प्रोग्राम साडे दिल तक अलग तरीके नाल पहुँचदा। जेकर असी सवेर तो लैके हुण तक दे प्रोग्राम देखिए तां हर एक प्रोग्राम मैनू पता है कि तुहाडे दिल च वसदा है और इस वेले जिसका आगाज हो चुका है

107.7 FM रेनबो ते हरीश नाले तुहाडे और प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया। दोस्तों जानते हो तुसी के फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच असी अलग अलग हस्तियां दी गल करदे हां और उन्हां दे स्पेशल डेज सेलिब्रेट करदे हां नाल नाल और उन्होंने अपनी लाइफ दे विच जो अचीवमेंट हासिल की थी। देखो फिल्मों दे विच बहुत सारे कलाकार और सिर्फ एक्टर्स ही काम नहीं करते, फिल्मों दे विच बहुत सारिया कैटेगरीज होंदिया ने जो सानू पर्दे दे सामने नज़र पर्दे ते नज़र आउंदे ने। वो लोग तो असी जानते हैं, उन्होंने जानते हैं, बट कुछ पर्दे दे पिछे भी रह के काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और जिहड़े हीरो है ना उन्होंने सफल बनाने दे विच अल्टीमेटली मेन जेकर असी गल कहीए तो जिहड़े बैक ते पर्दे ते पिछे काम करते ना भावें

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

107 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज थोड़े तक पहुंच रही है और इस वेले प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया। दोस्तों असी फिल्मी दुनिया प्रोग्राम च गल कर रहे हैं नन अदर देन वेटरन एक्टर कमाल दे एक्टर जो अपनी फिल्मों के जरिए अपने कैरेक्टर्स के जरिए साडे विच लोकप्रिय होए और उन्हां दा यूनीक एक्टिंग का स्टाइल अल्टीमेट सी। मंगल ढिल्लों जी की गल कर रहा मैं। थिएटर करद्या मतलब जदों कोई थिएटर करता है और थिएटर डायरेक्टर्स और आले दुआले दे जिहड़े लोग तुहानू देखण वाले स्टेज ते तुहाडे लई ताड़ियां वजाउण वाले जिहड़े लोग हुंदे ने, खास करके जदों तुसी किसी कॉलेज दे विच या यूनिवर्सिटी दे विच पढ़दे हो, तुहाडे नाल दे जिहड़े को एक्टर्स होण या तुहाडे प्रोफेसर तुहानू पढ़ाउण वाले सिखाउण वाले और स्टूडेंट्स उस कॉलेज दे उस यूनिवर्सिटी दे तुहानू बड़ा मतलब मोटीवेट करदे ने जदों तुहानू स्टेज ते परफॉर्म करदे आ। और उपरों जेकर तुसी वाकई उस विधा दे विच माहर हो तां सोने ते सुहागा हुंदा है। और ये जिहड़ी कला सी मंगल ढिल्लों दे अंदर ये उहनां दे प्रोफेसर्स ने उहनां नूं पढ़ाउण वाले एक्टिंग पढ़ाउण वाले जिहड़े खासकर प्रोफेसर्स सी और उहनां दे नाल कलीग उहनां दे एक्टर दोस्त और स्टूडेंट्स जिहड़े यूनिवर्सिटी दे विच पढ़दे आ उहनां नूं ये कहिंदे सी कि यार तेरे अंदर गलबात हैगी है और इस करके उन्होंने इस फील्ड नू ही अपना किता बनाउण बारे सोचिया। और यूनिवर्सिटी दे विच पढ़दिया उन्होंने थिएटर करना स्टार्ट कर दिता और कॉलेज दे विच तां थिएटर करदे सी बट अपनी दिनचर्या दे लई, कहण दा मतलब है कि ब्रैड एंड बटर दे लई कमाई दा साधन भी इस चीज़ नू बनाउण बारे उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया और इस करके वो दिल्ली पहुँचते ने। उत्थे थिएटर की पढ़ाई करन तो बाद जदों उन्होंने दूरदर्शन दे लई काम किया और बुनियाद सीरियल तो अलावा जेकर गल करिए असी जुनून नाटक दी किस्सा शांति का और प्रमाण वर्गे इदां दे सीरियल्स ने। जुनून की गल करिए या शांति की गल करिए मैं भी उदो बड़ा छोटा जिहा सी जदों ये सीरियल जिहड़े ने दोपहर दे टाइम आउंदे हुंदे सी, शांति वाला जिहड़ा सीरियल है। और जदों असी मतलब मैनू याद है अज भी वो वाकया कि मम्मी ने सानू दोपहर नू सोना और सीरियल जिहड़ा उदों सीरियल उन्होंने वेखना और सीरियल वेखण तो बाद सोना जबरदस्ती सोना बट असी किथे सोण वाले सी और हुंदा सी कि असी खेडिए। अज दे न्याणियां दा वी इहो ही हाल है बट वो खेडना उन्हां दा कुछ होर तरीके दा। अजकल खेडना सिर्फ उन्हां दा मोबाइल ते हुंदा, सानू इह हुंदा सी कि बाहर जाके न्याणियां दे नाल खेलीए। और ये सारे जिहड़े सीरियल्स मंगल ढिल्लों जी ने कीते ये वक्त मतलब जेकर साडे ज़हन दे विच हैगे ने है ना मतलब साड़ी मैमरीज़ दे विच उस तरह ने वो कैरेक्टर उस तरह ने तो वाकई एक्टर का काम मुकम्मल हो जाता। उत्थे अज उन्हां सीरियल्स नू मतलब 30-40 साल दे करीब समा हो चला है बट वो सीरियल्स वो उन्हां दे निभाए हुए किरदार अज भी उस तरह ने। और जदों ये विलन का किरदार निभाते सी ना भावें सीरियल्स दे विच तां लगदा सी कि यार कैसा गलत जिहा इंसान है यार, मतलब खेज आउंदी सी ना। और ये उन्हां दी एक्टिंग सी जो उन्हां नू उस किरदार नू जीवंत बनाउण दे विच मदद करदी सी। उन्हां दा वो जज्बा सी और मकबूलीयत सी अपने खेतर दे विच एक्टिंग दे खेतर दे विच। और तुहानू दस दें कि इन्हां ने मंगल ढिल्लों ने खून भरी मांग फिल्म दे विच काम किया, दयाल फिल्म दे लई काम किया, विश्वात्मा फिल्म, जख्मी, तेजाब वर्गियां फिल्मों दे विच कैरेक्टर भावें छोटा होवे या वड्डा ये मायने नहीं रखता। तुहाडी उस विच तुसी भावें एक लाइन का किरदार होवे उस विच की निभा के आए हो, की कर रहे हो तुसी कि लोगों के जहन दे विच जिंदा हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। ये सी अदाकार मंगल ढिल्लों का जादू कि अपनी भावें किसी भी किरदार दे विच उन्होंने पाया जाता सी उत्थे ही वो अपना जादू विखाउंदे सी। और कहिंदे ने ना पंजाबी दे विच मेला लुट लैना, बिल्कुल ओही उन्हां दी अदा सी एक्टिंग करन वेले।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। सर्वोच्च अदालत ने इतिहासक फैसले च कहा है कि घरेलू औरतों का काम सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, उन्होंने परिवार ते आने वाली पीढ़ियों के निर्माण च बेमिसाल योगदान है। भारत ने ओमान के तट ते पलाऊ झंडे वाले टैंकर एम टी स्टेबलो ते हुए हमले की सख्त निंदा की। हमले च तीन भारतीय नागरिकों की जान चली गई। सरकार ने साइबर अपराधियों वालों सुरक्षा प्रणालियों ते वित्तीय बुनियादी ढांचे नूं पैदा हो रहे वध रहे खतरे बारे चेतावनी जारी की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्र तरुण चुग मध्य प्रदेश तो राज्यसभा लई बिना मुकाबला चुने गए। हरियाणा सरकार ने सूबे भर के स्कूलों के अठवीं जमात के इतिहास के पाठक्रम च सिख गुरुआ ते बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास शामिल किया। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गड़ी ने तरक्की मामलों च हकदारा न्याय देने लई रोस्टर रजिस्टर चैकिंग कमेटियां की सिखलाई तुरंत यकीनी बनाने के निर्देश दिते। पंजाब के खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वालों बठिंडा च 140 क्विंटल गैर कानूनी खाद जब्त। अफसरां नूं अचनचेत चैकिंग च तेजी लियाउण दे हुकम जारी। फरीदकोट फिरोजपुर सड़क ते एक कार ते मोटरसाइकिल दी टक्कर च इको परिवार दे तीन जणियां दी मौत, दो गंभीर जख्मी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस वालों सरहद पारों नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश। दो नाबालिगां समेत छे मुलजमान 30 किलोग्राम तो वध हैरोइन समेत गिरफ्तार किया गया। मौसम विभाग वालों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च अज ते कल लई गरज चमक दे नाल गड़ेमारी होने बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। ये सन एफ एम न्यूज हेडलाइनस। हुण तो कुछ कु पलों बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे मस्ती जंक्शन।

0: आज पत्थर गिला होएगा। की करते हो नरेंद्र जी, की करते हो यार, की करते हो तुसी, पत्थर गिला नहीं होएगा।
1: श्रीमान जी, पत्थर ते जन गिला होऊगा पर रंग थोड़ो चेंज
0: ओ
1: होऊगा।
0: महाराज, वो रंग दी गल नहीं कीती, रंग दी किन्ने गल कीती महाराज, मैं गल कीती है ओनू की होएगा। तुसी सवाल दा जवाब जेड़ा है ओ नहीं दे पाए महाराज। खैर कोई गल नहीं, इत्थे एक बंदा भालिया सी इसे करके ही, और कुछ बंदे ताड़े वास्ते। आहा, थैंक यू सो मच नरिंदर जी साढ़े नाल गलबात करन दे लई। सवाल का जवाब नहीं दे पाए तुसी, है कि नहीं, हार गए हो। जेकर तुसी चाहुंदे हो कि तुसी मेरे नाल इस गेम का हिस्सा बनो और मस्ती जंक्शन दे विच चार चन्न लाओ, तुहाडा योगदान बड़ा जरूरी है। तुसी मेरे तक पहुँचना है 2813074 नंबर डायल करके, 01 81 लाओ, 2813074 डायल करो, तो फिर असी ए मस्ती भरे प्रोग्राम नू मस्ती भरिया गल्लां दे नाल अगे तोरांगे। ते महाराज तुहाडा ते मेरा साथ इस प्रोग्राम दे विच जिसदा नाम है मस्ती जंक्शन।

0: लाद के अखियां।
1: 102.7 FM रेनबो ते मस्ती जंक्शन प्रोग्राम चल रहा है और लिसनर मेरे तक पहुंच रहे हैं। एक लिसनर 2813074 डाल करके पहुंचे ने, गल करते हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन गल कर रहे हो जी?
2: मैं जुगल किशोर बोल रहा हूं लुधियाने तो।
1: जुगल किशोर जी, स्वागत है तुम्हारा। फिर तैयार हो, तैयारी करके आए हो तुम सवाल का जवाब देने के लिए?
2: सुन रहे हैं जी, कोशिश करांगे जी, सवाल दब जा गया।
1: ठीक है जी, दियो फिर। ए रिया तो हाड़े रेडियो सेट ते सवाल। हाई, जेकर एक मच्छी नू पानी दे विचो काढ के फ्रिज दे विच रख दिता जावे ता ओ की बनेगी?
2: मच्छी नू फ्रिज दे विच रख दिता जावे,
1: जेकर एक मच्छी नू पानी दे विचो काढ के असी कढ़िया पानी चो नाल ही फिर फ्रिज खोलिया, नाल ही फिर फ्रिज दे विच रखिया, फ्रिज बंद कर दिता, ठा, फिर ओ की बनेगी? फ्रिज दे विच रखिया फिर की बनेगी?

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की मीटिंग च विकसित भारत दृष्टिकोण लई केंद्र ते राज्यां दे समूहिक यतना ते जोर दिता। भारत ने ओमान दे साहिल ते पलाऊ झंडे वाले टैंकर एमटी स्टेबलो ते हुए हमले की सख्त निंदा की थी। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कश्मीर तो कच्छ तक देश दे सरहदी इलाकों च आकाशवाणी ते दूरदर्शन कवरेज नू मजबूत करन लई विशेष प्रबंध विकसित किए जा रहे ने। सरकार ने साइबर अपराधियों वालों सुरक्षा प्रणाली ते वध रहे माली बुनियादी ढांचे दे खतरे च उन्हां नू चेतावनी दिती है। भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सकत्र तरुण चुग मध्य प्रदेश तो राज्यसभा बिना मुकाबला चुने गए। सर्वोच्च अदालत ने एक इतिहासक फैसला च कहा है कि घरेलू औरतों का काम सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, उन्हों का परिवारों से आने वाली पीढ़ियों के निर्माण च बेमिसाल योगदान है। हरियाणा सरकार ने सूबे भर के स्कूलों के 8वीं जमात के इतिहासक पाठक्रम च सिख गुरुआ ते बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास शामिल किया। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिशन दे चेयरमैन जसवीर सिंह गड़ी ने तरक्की मामलों च हकदारा नूं न्याय देण लई रोस्टर रजिस्टर चैकिंग कमेटियां दी सिखलाई तुरंत यकीनी बनाउण दे निर्देश दिते। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वल्लों बठिंडा च 140 क्विंटल गैर कानूनी खाद जब्त, अफसरां नूं अचनचेत चैकिंग च तेजी लियाउण दे हुकम। फरीदकोट फिरोजपुर सड़क ते एक कार ते मोटरसाइकिल दी टक्कर च इको परिवार दे तीन जणियां दी मौत, दो गंभीर रूप च होए जख्मी। मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च अज ते कल लई गरज चमक दे नाल गड़ेमारी होण बारे ओरेंज अलर्ट जारी। ते पीवी सिंधु ते तनवी शर्मा आस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन दे औरतां दे सिंगल्स दे क्वार्टर फाइनल दे विच पहुंच गईआं। ਇਸ ਐਨ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ।

0: आहा हा, क्या बात है, वाकई ये यारी बड़ी अनमोल चीज़ है, जिदा कोई खास यार जिहड़ा लोड़ पैण ते तुहाडे नाल खड़ा हुंदा है, जेकर वो नहीं खड़ा हुंदा ते साइड करो उहनूं ते वधो अगे, और जेकर कोई हैगा इदां दा सच्चा यार तां उहनूं दिल दे विच हीरे दी तरह जड़ के रखो महाराज, क्योंकि इदां दे बंदे बड़े घट हुंदे दे जिहड़े लोड़ पैण ते साडे नाल, मतलब लोड़ पैण ते ही क्यों, खुशी दे विच होण, गम दे विच नाल होण, उही तां असली यार ने, है कि नहीं। मैसेजिज दा साडा सिलसिला स्टार्ट हो रहा, और पहला मैसेज पढ़ते हैं इस प्रोग्राम दा। हरीश दिस क्लाउडी, सत श्री अकाल जी, तुहानू भी सत श्री अकाल जी। हेयर इज जसवीर सिंह एंड दोराहा एंड नाल है जी मिंटू कोटली थान सिंह। प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, मुझे मत रोको मुझे गाने दो, सिंगर रफ़ी साहब, फिल्म सरगम। प्लीज एंड प्लीज प्ले दिस सॉन्ग जसवीर सिंह, थैंक्स। तुहाडा गाना और तुहाडा मैसेज, तुहाडा गाना प्ले होएगा, मैसेज तुहाडा मैं पढ़ दिता है, ते आ लो जी पूरी होगी तुहाडी ख्वाहिश।
1: मुझे मत रोको।

इश्क दी गल करदे हां महाराज, अजकल इश्क सिर्फ तुझी से एक शख्स नाल हुंदा है कि नहीं हुंदा महाराज? अजकल तां जिस हिसाब नाल इह डिजिटल युग चल रहा है, प्यार भी डिजिटल हुंदा जा रहा है। मिंटां सकिंटां दे विच चेंज हुंदा है, 30-30 सैकिंटां दे विच, जिवें असीं फटाफट एक क्लिक दे नाल रील चेंज कर दिंदे हां, है कि नहीं? 102.7 FM रेनबो ते इस वेले तुसीं हरीश दे नाल दिल चलदा प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो और थोड़े मैसेजेस पढ़ रहे हैं जी। मैं अगला मैसेज पढ़ते हैं। प्रोग्राम दिल चाहता है, पेश करता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, अभिनंदन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होती है आपकी, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। फिल्म का नाम छाया, गायक तलत महमूद और लता मंगेशकर जी, गीत के बोल, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये मैसेज सरता के पहुंचा रहे ने, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज पढ़ते हैं। नमस्कार, वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोई भी गीत सुना दियो जी, जरूर सुनाने जी। थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुँचाउण दे लई, और फरमाइश असी पूरी करते हैं फिर इसे गाने दी, तन्ना तो मुझसे ना प्यार बढ़ा।

ओहो यार, मनाउणा नहीं भावें लोग बोलियां बोलें, पर यार मन्नेगा कि नहीं, ये भी एक मुद्दा है। और यार महाराज, अजकल रुसे हुए छेती मन जाते ने, बस एक दियां मतलब रील शील या फिर इदा दे मौसम दे विच कितें शॉपिंग वॉपिंग, कितें खाण पीण, मोमोज गोल गप्पे वगैरह खुआओ, तो यार मैं कहना मिंटा सकिंटा दे विच मनाउंदा। 102.7 FM रेनबो दे दिल चाहता प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो हरीश दे नाल, और व्हाट्सएप मैसेजेस तुहाडे मेरे तक पहुंच रहे ने। मैसेज पढ़ते हैं। कार्यक्रम दिल चाहता है, फिल्म स्वीकार किया मैंने, गीत चांद के पास जो सितारा है बड़ा हसीन लगता है, आवाज़ किशोर कुमार, लता मंगेशकर, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश और हनुमान सहारण, ये मैसेज सड़क तक पहुंचाया इन्होंने, युधव कड़वासरा। थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुंचाने के लिए। और तुहाडा ट्रैक प्ले करते हैं जी, आप चांद के पास जो सितारा है बड़ा अच्छा लगता है।

रेनबो ते किशोर जी दी और लता जी दी आवाज़ दे विच खूबसूरत ट्रैक तुसीं इंजॉय कीता और आशा भोसले जी और किशोर जी इस गाने नूं अपनी आवाज़ां दे रहे सी। वधदे अगे अगला मैसेज पढ़दे हां जी। पवन लींबा अमरपुरा फजिलका तो मैसेज कर रहे ने, छोटी सी कहानी से बरसों ए फिल्म है जी इजाजत, आवाज़ आशा भोसले जी, जरूर प्ले किया जाएगा जी तुहाडा फरमाइश किया होया ए ट्रैक। थैंक यू मैनू मैसेज करन दे लई। और अगला मैसेज पढ़ते हैं सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर, एनी सोंग कह रहे ने जी। और इन्हों का जरूर आप हैलो मनमोहन डलहोजी तो ये मैसेज कर रहे हैं, दिल अपना पंजाबी में, थैंक यू, दिल दिल चाहता है प्रोग्राम है जी, दिल अपना पंजाबी नहीं, एनी सोंग कोई भी गाना कहते हैं प्ले कर दो, थैंक यू मेरे तक मैसेज पहुँचाने के लिए। और एक होर मैसेज पढ़ते हैं, किसी भी फरमाइश में शामिल कर अनुग्रहित करें, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, ये मेरे तक मैसेज पहुंचा रहे ने, थैंक यू सो मच। और असी इजाजत फिल्म का गाना सुनते हैं जी, छोटी सी कहानी से बरसों।

से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा एक गाना सुनना चाहते हैं। थैंक यू ये मैसेज मेरे तक भेजण दे लई जी। और मैसेजेस लगातार मेरे तक पहुँच रहे हैं, फरमाइशां जिहड़ियां ने वो जरूर पूरियां होणगियां जी। एक होर मैसेज पढ़ते हैं। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु तुहानू ते सब नू राजी रखे। चंडीगढ़ सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, शेफाली शेफी, मास्टर डेविस गाना सुनना चाहते ने। ये मौसम आया है लता किशोर जी की आवाज़ दे विच, जरूर सुनावांगे जी। अगे कहिंदे ने हरीश जी, अज सानू केड़ी बस ते चढ़ाता ते किहे बस ते नहीं महाराज, तुसी बिल्कुल टाइम से रहो और तुहाडा मैसेज पढ़िया गया। थैंक यू ये मैसेज साडे तक पहुँचाउण दे लई। गाने फरमाइशां साडियां साडे लिसनर जिहड़े साडे तक पहुँचा रहे ने जी। पिंड कल्याण मलका जिला बठिंडा तो अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर, ऐश ते मनिंदर गाना कहिंदे ने सुना दिओ सानू। थैंक यू सो मच मैसेजेस मेरे तक भेजण दे लई। और असी फिर ट्रैक सुनते हैं। मैंने पूछा चांद से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ दे विच।

आगाज़ मोहब्बत, आगाज़ सुकून और आगाज़ खुशी, आगाज़ शाम गज़ल जिस दा आगाज़ हो चुका है। हरीश नाल है तुहाडे और इस ठंडी ठंडी रात नूं होर भी रंगीन बनाउण दे लई और इस मौसम दे आनंद दे नाल नाल गज़लां दा आनंद और गज़लां दी खूबसूरती, इस दे विचला दर्द, इस दे विचला एहसास, ओ फील जो असी फील करदे हां उस वेले जदों असी उस सिचुएशन दे विच हुन्ने आ। हर सिचुएशन नूं अपनी खूबसूरती दे नाल बयान करदियां गज़लां। और उन्हां गज़लां दे विचली ये आवाज जो बयां कर दी है साडे एहसास नाल नाल गल्लां ते नाल नाल इन्हां गज़लां दा एहसास शामे गज़ल।

उस दिन से मैंने नदी वैसी हुई बहती नहीं देखी। उस दिन से नदी वैसी ही बहती है, पर जल में पहली सी बात नहीं है। पीपल अब भी छांव बिछाता है, लेकिन मन को कोई सौगात नहीं। संध्या हर रोज उतरती है रंगों का आंचल फैलाए हुए, पर उस आंगन में अब चिड़ियों की वैसी कोई बारात नहीं। मैंने कितने दीप जलाए हैं स्मृतियों के सुनसान तटों पर एक तुम्हारे लौट आने की अब तक कोई रात नहीं। कभी हवा ने छू कर पूछा था, किसका नाम लिया करते हो? मैं हंसकर चुप हो जाता हूं, पर दिल को ये खैरात नहीं। तुम्हें भुलाना आसान भी था यदि तुम केवल कोई व्यक्ति होते। तुम जीवन का वो हिस्सा थी जो कभी रूह से अलग नहीं हो सकता। कभी भी नहीं, कभी नहीं।

सुनो ना, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है तुम्हारे चले जाने का। सच कह रहा हूं, मुझे कोई मलाल नहीं है तुम्हारे चले जाने का। मुझे खुशी है कि तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे। ये बहुत कम होता है जिंदगी में, जो हम चाहें हमें वो मिल जाए। मैंने जो चाहा मुझे नहीं मिला, लेकिन इस बात की खुशी है

कि तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया, इसलिए मुझे मलाल क्यों हो। हां गम जरूर है, वो गम तुम्हारा नहीं मेरा है, वो गम तुम्हारा नहीं वो गम मेरा है, क्योंकि वो प्यार भी मेरा है चाहे वो तुम्हारा है। और तुम मुझे वो करने से रोक नहीं सकते, छीन नहीं सकते मुझसे वो मेरा प्यार, वो मेरा और तुम्हारा प्यार जो हमेशा ऐसे ही रहेगा, मेरा और तुम्हारा प्यार।

तुमसे मोहब्बत थी, तुमसे मोहब्बत थी इसलिए तुम्हें जाने दिया। तुमसे मोहब्बत थी, जिद नहीं थी इसीलिए तुम्हें रोका नहीं। तुमसे मोहब्बत थी, कोई शर्त नहीं थी कि बदले में हमें भी मोहब्बत मिलेगी। तुमसे मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत, इसलिए बदले में कोई मोहब्बत चाहने की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत थी इसीलिए तुम्हें जाने दिया। कोई जिद नहीं थी इसीलिए तुम्हें रोका नहीं। उम्मीद है कि ऐसी मोहब्बत तुम्हें फिर मिले जो शायद नहीं मिलेगी। मोहब्बत तो जिंदगी में एक ही दफा मिलती है, एक ही दफा मिलती है, और मुझे नहीं लगता कि वो मोहब्बत तुम्हें, मुझसी मोहब्बत तुम्हें दोबारा मिलेगी।

कितना समा हो गया है तुम्हें देखे हुए, कितने बरस हो गए हैं तुमसे बात किए हुए, लेकिन हमने अपने मन को समझाया बहुत है, इसको बहलाया है तुम्हारी याद से, क्योंकि कभी लगा ही नहीं कि तुम पास नहीं हो, कभी लगा ही नहीं कि तुम नहीं हो, तुम हमेशा साथ हो, तुम्हारी याद हमेशा मेरे पास है, जो हमेशा आती रहती है, हर रात हर बात पर। शाम गजल नूं इत्थे खत्म कर दें और इस प्रोग्राम दी अखीरली गजल तुहाडे पेश खिदमत है।

एक प्यार का नगमा है, प्यार परे इस मौसम दे विच, ए प्यार परे नगमे रेट्रो सॉन्ग्स जिसका

एक समय था जब मुझे लगता था कि अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें कभी दर्द नहीं होता। लेकिन एक दिन जब तुम याद है मुझे डराने के लिए जानबूझकर जब मैं घर आया तो तुम कहीं चली गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर जगह तलाशा, तुम नहीं मिले। तुम्हारे घर फोन किया, वहां मम्मा ने कहा कि तुम यहां भी नहीं हो। तुम्हारे ऑफिस दोस्तों को फोन किया, तुम वहां भी नहीं थी। मालूम है मैं कितना डर गया था? उस वक्त उस दर्द का एहसास हुआ था, अगर तुम ना हो तो क्या हो, ये जिंदगी यूं ही तबाह हो।

सुनो ना, तुम अक्सर मुझे मेरी याद दिलाती हो, उस इंसान की जो मैं कहीं रास्तों में खो गया था।

जिम्मेदारियों की धूल में दबकर जिसने अपने ही सपनों की आवाज सुनना छोड़ दिया था। और फिर तुम आई और बिना कुछ सिखाए मुझे मेरी तरफ लौटा दिया। जब तुम मेरी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराती हो तो लगता है शायद मैं इतना साधारण भी नहीं। जब तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मुझे खुद पर थोड़ा और यकीन होने लगता है। जब अजीब बात है ना, लोग मोहब्बत में अक्सर किसी और को पा जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पाकर खुद को पा सका। इसलिए तुम अक्सर मुझे मेरी याद दिलाती हो, तुम मुझे अक्सर मेरी याद दिलाती हो।

ने मुझसे पूछा था, क्या तुम कोई जोची वोची हो या उस पर विश्वास करते हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं में दिया, क्योंकि सच कहूं तो मुझे हमेशा ग्रहों से ज्यादा इंसानों में दिलचस्पी रही है। फिर मैंने तुम्हारी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि सितारे हमारी किस्मत लिखते हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनके आने के बाद पहले जैसे हम नहीं रहते। पहले मैं समय देखता था, अब इंतजार महसूस करता हूं। पहले रास्ते सिर्फ रास्ते थे, अब कुछ जगहों से तुम्हारी यादें जुड़ चुकी हैं। पहले दिन गुजरते जाते थे, अब कुछ पल ठहर जाते हैं। उस दिन समझ आया कि शायद ज्योतिष का सबसे सुंदर पक्ष भविष्य जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ मुलाकातें इतनी दुर्लभ होती हैं कि उन्हें सिर्फ संयोग कह देना ऐसे ही नहीं होता। वो अन्याय लगता है। और तुम मेरे लिए शायद उन्हीं दुर्लभ संयोगों में से एक हो कि मुझे तुम मिले।

सुनो ना, मुझे रह रहकर याद आता है तुम्हारा ठुड्डी के नीचे अपने हाथ को रखकर फोटो खिंचवाना, अपनी बड़ी बड़ी आंखों में छोटे छोटे सपने लेकर जब तुम दुनिया को देखती हो तो मेरे दिल के कुछ अरमान खुद ही पूरे हो जाते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा दिल साफ नजर आता है। मैंने कई बार देखा है वो जो उस वक्त तुम सोच रही होती हो। कोई उलझन हो तो आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं तुम्हारी, और जब किसी चीज को मन ही मन सुलझा लिया हो तो तुमने एक अलग चमक आ जाती है। उन्हें मैं जैसे ही ये

देखा है, वो जो उस वक्त तुम सोच रही होती हो। कोई उलझन हो तो आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं तुम्हारी, और जब किसी चीज को मन ही मन सुलझा लिया हो तो तुमने एक अलग चमक आ जाती है। उन्हें मैं जैसे ही ये कहना चाहती हूं कि मेरे लिए मैं खुद ही बहुत हूं। तुम्हारी ऐसी एक नजर मुझ पर पड़ जाए तो अपनी बहकती हुई भावनाओं को हाथों में मैं भी संभाल लूं। ये देखकर सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, हमेशा हमेशा के लिए। फिर लगता है कि क्या यही प्रेम है।

जो मैं किसी से नहीं कह पाता वो तुम्हें कह पाता हूं, जो मैं किसी को नहीं बताता वो सिर्फ तुम्हें बताता हूं, जो मैं सोचता हूं उस सोच में तुम हो, मेरी हर एक बात में सिर्फ तुम हो। हर याद में सिर्फ तुम, और मुझे लगता है कि मेरी कहानी ही तुम पर आकर खत्म होती है और तुम से ही शुरू होती है, चाहे ये दो लफ्जों की हो, है ना। और इन्हां गल्लां दे नाल इस प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करन दा वेला आ गया। एक प्यार का नगमा और साडी महफिल इत्थे खत्म हुंदी है। जिंदगी दे सफर च तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात होएगी। बाय, टेक केयर। ए प्रोग्राम दा अखीरला ट्रैक।

0: साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा